एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 30वीं तिथि। तदनुसार 21 अगस्त 2026 इस समय प्रातः की 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

एफएम वैनिक सेक्टिश बुलाओ 3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियांग से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 और 6 सेकंड ये समय है चिंतन का। चिंतन में आज का विषय मदद की भावना। तो आइए सुनते हैं चिंतन।
1: वास्तविक स्नेह प्रशंसा से नहीं सेवा से दर्शाया जाता है। जीवन प्रेम है और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। ये सभी पंक्तियाँ जीवन में हमने बहुत बार सबने सुनी है, लेकिन जीवन में इन्हें अपनाया कितनी बार है ये बहुत आवश्यक है। अच्छी बातें फूलों की खुशबू की तरह होती है, बहुत समय तक हमारे साथ साथ रहती हैं और यही चीज उनका जीवन में अनुसरण करने का कारण भी बनती है। हमारे विचार ही हमें महान बनाते हैं। मनुष्य समाज में रहता है और हर दूसरे पल उसे किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में जब मनुष्य के मन में दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने वही मदद करने की भावना पैदा हो जाती है तो वो मनुष्य मानवता के सबसे बड़े स्तंभ पर खड़ा होता है। दूसरों की मदद का भाव हर धर्म में है। सभी के साथ दया भाव दिखाना और उनसे प्रेम करना धर्मों ने सिखाया है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल वही व्यक्ति कृतज्ञता से भर नहीं जाता, बल्कि ईश्वर भी मदद का हाथ बढ़ाकर पहल करने वाले से प्रसन्न होता है। और ये एक करने का फल है कि जब कभी आप मदद को पुकारते हैं तो कोई न कोई हाथ आपकी ओर भी अवश्य बढ़ता है। दूसरों की मदद हमेशा निस्वार्थ भाव से कीजिए और देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि देगा।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल आप सुन रहे हैं। सवेरे के 6:08 ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो आइए सुनते हैं।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं सुप्रभात। कहते हैं इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान कहलाता है और जो झलक जाए वो अभिमान। अब ये आपको तय करना है कि आप स्वाभिमानी बनना चाहते हैं या फिर अभिमानी। इसी सुविचार के साथ आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत अनुराधा पौडवाल के स्वर के साथ।

संत सूरदास की लिखी ये रचना अनुराधा पोडवाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर के स्वर में। श्रोताओं, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते और इसी सज्जनता से समूचे विश्व का कल्याण होता है। जब ईश्वर की भक्ति में इंसान लीन होता है तो ईश्वर की भक्ति से हमेशा सतमार्ग पर चलने की कोशिश करता है। ईश्वर में आस्था ही हमारी सच्ची दिशा तय करता है।

समर सोलंग और सुरेश वाडकर के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

माही चैनल है। प्रातः की 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हो तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतनी बात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 10:00 व 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 11 बजे समय रहेगा सुगम संगीत का। 9:30 आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और 11:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायकालीन सुबह में 5:05 पर आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम, 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से, 7:00 समय रहेगा चौपाल का, 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या व 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 10:00 समय रहेगा फिल्म संगीत का।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेतनी बात कार्यक्रम।
1: खेती में बात कार्यक्रम हमारा सब भयन ने बोलने सुराती के तबेनो राम राम राम राम। बहन बहनों, खेती बाड़ी में मक्का सोयाबीन कपास दलहनी फसल कर ली है। अभी अपने खेती बाड़ी में खरपतवार नहीं काटने का काम है, करी सको। समय में अपने खेतर

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना घनश्याम वसाखियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं सीमा भट्ट।
1: आत्मविश्वास बरसात में एक छाते की तरह है जो बारिश को नहीं रोक सकता, पर उसमें खड़े होने की हिम्मत देता है। उसी तरह आत्मविश्वास हमारे जीवन में सफलता लेकर नहीं आता, लेकिन सफलता की राह में जो रुकावटें आती हैं, उन्हें सामना करने की हिम्मत देता है। हम आत्मविश्वास के दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बात आती है आपका आत्मविश्वास कैसा है, ऊंचा या नीचा। उच्च आत्मविश्वास वाले लोग हमेशा जिंदा दिल होते हैं। वो हमेशा जिंदगी का मजा लेते

से सही ढंग से जीते हैं। उच्च आत्मविश्वास वाले लोगों का दिमाग एक जगह पर एकत्रित होता है। वे नई संभावनाओं के बारे में सोचते हैं। वे हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी गलतियों को मानकर उनको सुधारते हैं ताकि बेहतर जीवन की ओर बढ़ सके। वे हमेशा वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, वो नहीं जो दूसरों को अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कम आत्मविश्वास वाले लोगों की। उनके जीवन को हमेशा दूसरे लोग ही चला रहे होते हैं। जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही ये लोग करते हैं। ये लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, उन्हें कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोग जीवन में कोई भी जोखिम लेने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि क्या करना है, ज्यादा काम करके जितना है बहुत है। ये लोग असफल होने से डरते हैं, अपनी गलतियों को छुपा देते हैं और फिर भी सोचते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। मेरे मायने में आत्मविश्वास बढ़ता है कार्यकुशलता से, और कार्यकुशलता आती है ज्यादा ज्ञान से, और ज्ञान आता है आपके व्यवहार से। अगर आपके पास ज्ञान है तो आत्मविश्वास तो आ ही जाएगा, और अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं तो योग्यता भी आ ही जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा। सभी में कोई ना कोई ताकत होती है और कोई ना कोई कमजोरी भी। बस अपनी ताकत को पहचानिए और उसको और ताकतवर कीजिए और अपनी कमजोरी को दूर कीजिए। उदाहरण ही ले लीजिए कि मान लीजिए आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप सबके सामने अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं नहीं बोल पाते, आपके शरीर में कंपन सा महसूस होने लगता है, तो ऐसे में आपको हिम्मत करनी चाहिए और इसके लिए आपको कांच के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए और आप देखेंगे कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे। उच्च आत्मविश्वास के लिए अपने दिमाग में हमेशा अच्छे ख्यालों को जगह दीजिए, बुरे ख्यालों को निकाल फेंकिए। दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं, पर ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आप अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं या बुरी। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आज ही अपने भूतकाल में किए गए अच्छे कार्यों की सूची बनाइए, जैसे कक्षा में अच्छे नंबर लाना, किसी की मदद करना और भी छोटी छोटी बातें। अब उस सूची को पढ़िए, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। अब हम जानेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ तरीके। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बेहद जरूरी गुण है। जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच चुके हर एक व्यक्ति में आपको ये गुण दिख जाएगा, फिर चाहे वो कोई अभिनेता है या कोई क्रिकेटर, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति या आपको पढ़ाने वाला शिक्षक। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो हर एक किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दीजिए। अपने पहनावे पर, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों का सामना करने का आत्मविश्वास देता है, और वही अगर आपके कपड़ों का चुनाव गलत है तो आप स्वयं ही असहज महसूस करेंगे। आप कपड़ों में जितना खर्च करते हैं उतना ही करें, लेकिन सही कपड़ों का चुनाव करें। वो करिए जो एक आत्मविश्वासी इंसान करता है। जैसे कक्षा में आगे की सीटों पर बैठिए, कक्षा में, सेमिनार में और अन्य मौकों पर सवाल पूछिए, जवाब दीजिए, अपनी पहचान बनाइए। अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज में मत बोलिए, नजरें मिलाकर बात कीजिए, नजरें मत चुराइए। किसी एक चीज में अधिकतर लोगों

0: से बेहतर बनिए। चाहे वह किसी विषय का ज्ञान हो, संगीत हो, नृत्य हो या कोई खेल, हमेशा सोचिए कि आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। आप स्वयं किसी से कम नहीं है। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है। गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने आज तक कोई गलती ना की हो? गलतियां करना व गलतियों से सीखना मनुष्य का स्वभाव है। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे बार बार दोहराना गलत है। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए आज मैं सफल हूँ। जो चीज आपका आत्मविश्वास घटाती है उसे बार बार कीजिए। गांधी जी की यह बात मुझे बहुत प्रेरित करती है कि पहले लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे, क्योंकि आप जीतने के लिए ही यहाँ हैं, हारने के लिए नहीं। सबसे अधिक आवश्यक है कि आप खुद से प्यार करें। गुण और अवगुण तो हर किसी में होता है, किंतु सामान्यतः ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने गुणों को भूल अवगुणों के कारण आत्महीनता का शिकार हो जाता है। हीनता की एक वजह सफल व्यक्ति से अपनी तुलना करना होता है। जब आप किसी सफल व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं तो खुद को उसके सामने हीन महसूस करने लगते हैं और जिसके कारण आपके अंदर निराशा पनपने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। सबसे पहले तो आप अपने मन पर जीत हासिल कीजिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता जिसमें केवल गुण ही गुण हो। हाँ, यह हो सकता है कि जो गुण दूसरे व्यक्ति में है वो आप में ना हो, तो फिर आप अपने आप को किसी से कम क्यों समझे। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने गुणों के लिए अपने ऊपर गर्व कीजिए। अपनी कामयाबियों को ध्यान में रखिए। यदि आप अपने आप को ही पसंद नहीं करेंगे तो किसी दूसरे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। आप में खूब काबिलियत है और आप दिखने में भी स्मार्ट है, पर क्या फायदा अगर आप में आत्मविश्वास ही नहीं है। माना कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आत्मविश्वास आना मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन जैसी चीज भी नहीं है। यदि आप किसी के सामने बोलने में भी सकुचाते हैं तो तय मानिए आपकी सफलता के रास्ते में रुकावटें भी कम नहीं होंगी, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे आपके स्वयं के आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इतना ही नहीं, यदि आप में आत्मविश्वास है तो सफलता अवश्य आपकी कदम चूमेगी। भगवद गीता में भी यह बात कही गई है कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इच्छित वस्तु यानी आपकी मंजिल को पाना तभी संभव है जब आप में खुद पर विश्वास हो। फिर क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए जिससे आप अधिक से अधिक आत्मविश्वासी बन सफलताओं को गले लगा सके। आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता, और वार्ताकार थी सीमा भट्ट। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में

0: दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाय के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC

0: नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रूपये वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और

0: पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 96.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

एहसास जब तक दिल में जिंदा है तब तक तू हार नहीं सकता। दर्द तुझे तोड़ेगा जरूर पर बिखरने नहीं देगा। टूटा है तो बिखरा मत कर, एहसास को हथियार बना। जो आज रुला रहा है तुझे, कल उसी को जवाब बना। सभी को

दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एहसास जो दिखता नहीं सिर्फ महसूस होता है, ये शब्द नहीं ये दिल की धड़कन है। भूख, प्यास, दर्द ये तो शरीर के होते हैं, पर एहसास आत्मा का होता है। जैसे हवा को देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वैसे ही एहसास को भी मां की ममता, दोस्त का साथ, सब एहसास ही तो है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, किसी अपने के दूर जाने पर आंखों में आंसू आना, ये बताता है कि रिश्ता कितना गहरा था। घर से दूर जब माँ के हाथ के खाने की याद आती है तो एहसास घर से जोड़ता है। किसी अनजान की मदद करके जो सुकून मिलता है वही सबसे बड़ा एहसास है।

श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मोबाइल के बिजी हो गए हैं। हम फोटोज देखते हैं पर एहसास करना भूल गए हैं। किसी के कंधे पर हाथ रखना, गले लगाना, इन छोटे छोटे एहसासों में बड़ी खुशी छुपी है।

श्रोताओं, बिना एहसास के इंसान मशीन बन जाता है। एहसास ही हमें इंसान बनाता है। एक अध्यापक को अपने छात्र का, एक डॉक्टर को अपने मरीज का दर्द महसूस होना ही सच्चा एहसास है। कवि ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है।

श्रोताओं, एहसास को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, ये सिर्फ जिया जा सकता है। आइए हम सब फिर से एहसास करना सीखें, अपनों को समय दें, उनकी बात सुनें, उनके साथ हंसे रोए, क्योंकि अंत में यादें नहीं एहसास ही रह जाते हैं।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत गार्गी बनर्जी के स्वर में।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत गार्गी बनर्जी के स्वर में, प्रातः के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने, टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन में एआई के इस्तेमाल, कौशल विकास तथा पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। जयपुर में 19 और 20 अगस्त को आयोजित ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक में इन विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद अब पर्यटन मंत्रियों की बैठक में इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक के माध्यम से भारत का लक्ष्य ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी को नई गति देना तथा सदस्य देशों के बीच पर्यटन आवागमन को बढ़ावा देना है। उधर आज पुणे में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के बाद विभिन्न विभागों से संबंधित प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं सदन की

0: पर रखी जाएंगी। कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया जाएगा। वित्तीय कार्य के तहत वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रथम संकलन पर चर्चा, मतदान और पारण की कार्रवाई होगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित जिलों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण और चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा का काम जारी है। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं सवाई माधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। जैसलमेर में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं सलूम्बर में स्वीप गतिविधियों के तहत दीप जलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने मीडिया को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
1: कुछ मीडिया के माध्यम से हम ये सभी को ये कहना चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन है वो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो भी चुनाव होंगे बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें कानूनन कार्रवाई करने में किसी का परेशानी नहीं है। उनसे भी हमारे आह्वान रहेगा कि जो भी नियम है उसकी पालना करते हुए आप अपना चुनाव प्रचार करें, चुनाव लड़े।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। कल जयपुर में हुई यूएई राजस्थान टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट की राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति से समृद्ध राजस्थान में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी निवेशकों को हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। बैठक में यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अलमरी ने कहा कि यूएई की कंपनियां राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक हैं। श्री अलमरी ने जयपुर और दुबई के बीच हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने की भी बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री को दुबई यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर यह मंजूरी दी गई है। आदेश के अनुसार उनका सेवा विस्तार 1 सितंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रहेगा। गौरतलब है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल इस महीने की 31 तारीख को समाप्त हो रहा था। पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्य स्तरीय वेबिनार आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश के सभी पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संवाद करेंगे। इस दौरान विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, स्वच्छ तथा हरित विद्यालयों के निर्माण, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के प्रभावी संचालन और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। वेबिनार का उद्देश्य पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना है। जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में गेहूं और जौ पर 3 दिन की 65वीं राष्ट्रीय कार्यशाला कल संपन्न हुई। भारतीय

0: गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि कार्यशाला में गेहूं और जौ की उत्पादकता बढ़ाने, बदलती जलवायु के अनुरूप नई किस्में विकसित करने, रोग और कीट प्रबंधन तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर चर्चा हुई।
1: भारत सरकार के द्वारा वो प्रजातियां बनेगी और कुछ जल्दी ही समय में वो किसानों तक पहुंचेंगी। इनमें से 13 गेहूं की और 11 जौ की प्रजातियों को चिन्हित किया गया है, जिनका की प्रपोजल आगे भेजा जाएगा गवर्नमेंट को। छिलका रहित जौ की बात हुई है और उसकी कुछ प्रजातियों को भी चिन्हित किया गया है। गेहूं में भी जो उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, इस बार हमारा जो देश है उसने 120 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया था और अब उसके गुणवत्ता पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उनके उत्पाद जो बनाए जाते हैं उनके लिए विशेष प्रजातियों का को चिन्हित किया जाए आगे आने वाले दिनों में।
0: चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने प्रदेश में टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल जयपुर में आयोजित विभागीय बैठक में टीबी रोगियों का 100% उपचार शुरू करने, स्क्रीनिंग और जांच बढ़ाने तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के कपासन में गर्भवती महिला की मृत्यु के मामले में संबंधित एएनएम और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और प्रसव के बाद देखभाल पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अलका याग्निक के स्वर में कुछ गजलें।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना अलका याग्निक के स्वर में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी,
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो भोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी,
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी,
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
2: जी,
0: पता है उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी,
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी,
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये

0: विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते
0: जी।
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो
0: जी,
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई न कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचा

0: कम है, शेष खारा जल है। इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरो जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
5: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
6: झुमरो जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
7: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरो जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
7: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक,
1: बताओ।
7: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
7: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
7: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास
1: बहुत बड़ी पीस है।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।

0: आपने तो मेरी मन की बात कह दी। चलिए
1: तो शुरू हो जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
1: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो अब तुम्हारी बारी है।
2: जीवन सुखद बनाएंगे,
0: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
0: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।

0: और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
1: कट गया कैद में माहे रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माहे रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
0: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी, उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
2: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब मोहानी की खिदमत में।
1: अरे आप आदाब अर्ज आइए आइए, तशरीफ रखिए।
2: जी शुक्रिया।
1: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
2: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
1: जी बस
2: जी।
0: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था, वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
1: जनाब बस जरा सी देर और, बस ये समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
2: जी आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मजे में होंगे।
1: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
1: मोहानी साहब ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो। चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
2: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
2: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
2: या खुदा
1: नौज फरमाइए मियां,
2: जाइए
1: खाओ।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे, मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
2: लिख दिया,
1: शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
4: इरशाद गिरामी।
1: है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी।
2: वाह क्या बात है। है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी।
1: वाह एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
2: एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। क्या
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।

0: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
1: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
0: अरे मोहानी साहब, इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
1: जी नहीं नहीं नहीं, मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
1: नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
0: क्या?
1: जी, अब एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
2: अरे मोहानी साहब, शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंदा शार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
0: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
2: नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
1: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
2: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: मोहानी साहब, क्या आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
3: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
0: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
1: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
0: आपने कुछ खाया ही नहीं?
1: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
0: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
1: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
0: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
2: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शब्बा खैर।
2: शब्बा खैर।
1: बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं उड़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
3: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। उस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
2: मथुरा ये नगर है आशिक

0: दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयाते जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
1: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: ये आकाशवाणी पासवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार। आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बंद कर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें। हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
0: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं तो क्या हाल चाल है वहाँ के?
1: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही है, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
0: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
1: अपना ये मकान वकान बनाने का, ऐसे ठेका वेका ये लेते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, ठेका भी ले लेते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच में आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
1: जी अभी भी साइट चलती है, तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
0: तो आपको किस तरीके गाने अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुवाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्त पर संगीत उत्पन्न 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
0: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल।

0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम। तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए।
1: जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
1: तो लीजिए, आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया, तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव में एक बम्बई हसलन रोड पे है, हेवी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी रहती
0: है। क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय।
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है।

0: और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
1: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
0: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
1: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
0: बिल्कुल, जो कुदरती बेन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती बेन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
1: क्या बात है। और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप? कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
0: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बोर है, कुआ भी है,
1: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
0: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
1: बहुत अच्छी बात है। और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
0: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
1: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि?
0: जी जी।
1: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: जी, हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
1: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: बताइए
1: जी। मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डी गुड़िया के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी।
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी। बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है। तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की सिर वो झड़े।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया। तो अपने बारे में कुछ

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सबाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं। तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी, लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो

0: हूँ मैं।
1: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
0: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती हैं और मजा आता है। उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं ना, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
0: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
1: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है
0: जी।
1: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
0: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
1: जी, और क्या शौक है आपके?
0: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी है, पहले से चला आ रहा है लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, और मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
1: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
0: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
1: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
0: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
1: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
1: बताइए बिल्कुल।
0: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
1: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: जी शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी, जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही की बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े, मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सभी हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो जी आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो इसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह ये सब की फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में
0: जी।
1: हम लोगों के क्षेत्र में धान, धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है, वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: उसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कांच शॉल होते हैं मैं उसी के साथ उसी का बिजनेस करता हूँ मैम।
0: इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा,
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी जो डिजाइन होगा
0: जी,
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो जीली डल में जो हाउस बोट होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
0: क्या बात है। और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
1: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल। तो बताइए, हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है।
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी एड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश कंजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई हुई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है उसमें ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है तिल्ली खाते हैं वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है उसका प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुशी हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही हैं?
1: हाँ मैम, गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना सब, वो सीख रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहाग राग के हुए एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, निसा गम पम गम गम पनी पनी सा पनी सा नी दो पम पग मगरे सा नी सा। जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, निसा गम सा गम पग म पनी सा।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी, और आपके कार्यक्रम विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो हाँ। तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: ये निकलता है, एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा, और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारती कार्यक्रम हेलो फरमाइश सखी सहेली, और वो सेतनामा 4 बजे आता है, त्रिवेणी छिके लोग सभी सुनते हैं, चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए, अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है, और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो।
1: हाँ।
0: और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है, 20 भुजा देवी।
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलते हैं कि खाने पीने की सब्जी वाली, वो तो जिला है अपना गुना। तो
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमेरा इतिहास की बुलंदी का।
0: तो गोपाल जी, लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहे हैं, बिमल बसुमतारी मैम।
0: बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं?
1: जी मैं तो, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी मैम, हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया, लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम।
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं? तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए, कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम, हम 12 साल से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम।
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी मैम, हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था।
0: तो बाकायदा कोई कोर्स किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी उधर दुकान एक था और दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं, सिलाई कोई और करता है?
1: हम खुद सिलाई भी करता है, खुद कटिंग करता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी मैम, मैं खुद करता हूँ, मेरा छोटा मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छी बात है। और असम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
1: असम का बारे में जैसे हो गया, हमारा गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी ठीक है, कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है,
0: बड़ा खूबसूरत हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी मैम, मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, ईटानगर है, लखनऊ है,
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
0: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288 यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466 2 यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुरलेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45
1: पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग की पहली पेशकश ये।

एफएम 96.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: दा फ्लैट है।
1: हाँ,
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ, पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: राजेश।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं अनुराधा पोरवाल के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना अनुराधा पौडवाल के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं पीके फिल्म से। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत, बोल हैं अमिताभ वर्मा के और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अगली पेशकश फिल्म बर्फी से मोहित चौहान के स्वर में, बोल हैं सैयद कादरी के और संगीत दिया है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं परिणीता फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत। बोल है स्वानंद किरकिरे के और संगीतकार है शांतनु मोइत्रा।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं जुदा अकबर फिल्म से जावेद अली के स्वर में गीत। संगीत दिया है AR रहमान ने और बोल हैं जावेद अख्तर के।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं मोहित चौहान के स्वर में फिल्म तमाशा से ये गीत। बोल है इरशाद कामिल के और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजने को है। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

0: अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: यादें याद आती, ये यादें इसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती।
1: यादें फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी की आवाजों में। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट

0: जैसे दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे अल्लाह दिना बदली दुनिया के आया नया।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी में से लिखा और आनंद मिलन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा उपाध्याय, आज आपके साथ इस सफर में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपके गीतों की लिस्ट मैं देख चुकी हूँ कमेंट बॉक्स में जाकर, और भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं ये भी मैं देख रही हूँ, और देखते हैं कि आपके ये गीतों की लिस्ट या शब्द हमारे गीतों से कितने मिलते जुलते हैं। और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीतों को, पसंदीदा गीतों को कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और जिन श्रोताओं ने वो टेक्स्ट या इबारत नहीं पढ़ी है अब तक, हम उन्हें एक बार फिर से पढ़कर सुना देते हैं। इबारत इस प्रकार है, शाम का मौसम कुछ बदला बदला था, कई सालों बाद शहर में सावन इतनी खूबसूरती से आया था। खिड़की के पास बैठी एक लड़की बारिश को देख रही थी और जाने क्यों आज फिर उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी। सुनिए, कुछ कहिए ना। सालों पहले इसी मौसम में एक अजनबी उससे मिलने हसीन वादियों में आया था। दोनों घंटों बारिश में भीगे थे, चांद को देखते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। उसने कहा, तुम्हें पता है ये मौसम तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। फिर एक दिन उस परदेसी को दूर, बहुत दूर जाना पड़ा। अब बस इंतजार उसका साथी बना। हर सावन में वही राहें, वही बरसात और वही शाम, वो ही उसके साथी थे, उसे उसकी याद दिलाते। आज भी बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, लेकिन अब के सावन में जी डरे बेचारा दिल क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो सामने उसे देखा, बस ये कहा, अब की तो रास्ता भूल गए लेकिन अब कहीं ना जाना। बहुत प्यार से उसने कहा, मैं चांद चुरा कर तो नहीं ला पाया लेकिन तुम्हारा इंतजार जरूर अपने साथ लेकर लौट आया हूँ। तो साथियों, ये थी इबारत। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अमित खन्ना ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। साथ ही आपके खूबसूरत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत उस इंतजार, उसी मोहब्बत और उस विश्वास की कहानी है जहां बरसों की दूरी भी दिलों के रिश्तों को कम नहीं कर पाती है। हालांकि संदेश बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सभी के संदेश शामिल हो, इसीलिए कुछ पंक्तियां ले रही हूं। हमारे दूसरे श्रोता कहते हैं कि विरह प्रेम की वो निषिद्ध ऋतु है जिसमें स्मृतियां ही सहचर बन जाती है। प्रिय की अनुपस्थिति में हर आहट उसका आभास देती है। जब बरसों बाद दो निगाहें मिलती है तो लगता है जैसे सारी तन्हाइयां एक पल में सिमट गई है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत पढ़ते हुए

ऐसा लगता है जैसे सावन की हर बूंद किसी पुराने खत का भीगा हुआ अक्षर हो। बरसों का इंतजार, वही रास्ते, वही शामें और किसी की आवाज की बची हुई गर्माहट सब मिलकर दिल के उस कोने को फिर से भिगो देते हैं जहां मोहब्बत कभी विदा हुई ही नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में सावन को हमेशा श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी कि वियोग और संयोग से जोड़कर देखा गया है। कथा की शुरुआत में नायिका का खिड़की के पास बैठना और बारिश की बूंदों के साथ पुरानी स्मृतियों का उभरना, और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे इस इबारत के बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का महीना तो है, ये जाहिर है, लेकिन गीत भी वैसे ही बजेंगे और हम कितनी ही बार ये गीत सुन ले लेकिन मन नहीं भरता है, तो इसीलिए बारिश नहीं है तो भी धूप के साथ हम आनंद उठाएंगे इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हालांकि सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन सुरीला सफर में पूरे माह अलग अलग विषय पर मेला लगा है। कभी झूला, विरह, इंतजार, बारिश की फुहार, खाना पकौड़ी आदि, बहुत मजा आता है। और सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का ये अंदाज बहुत ही निराला है जो कि हम श्रोताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मोतियों की तरह पिरोकर रखता है। सच में जिंदगी में सावन की बूंदे की तरह छम छम ये कार्यक्रम रंगारंग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों का। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी। फिलहाल हम एक गीत सुनवाने वाले हैं और आप सब ने उसका जिक्र किया है अपने कमेंट में, वो बहुत ही प्यारा गीत है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं और उसके बाद हम आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो अनुभव है वो साझा अगर आप हमसे कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इबारत लिखी है कि एक शाम वो मौसम, इस तरह का अगर कुछ आपको अपना अनुभव शेयर करना है, लिखना है, लिखें बहुत ही कम शब्दों में ताकि हम शामिल कर पाएं। चलिए इस प्रोग्राम के दूसरे गीत की तरफ बढ़ते हैं।

बालिका वधू इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। सुरीला सफर है और आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश। बालिका वधू अमित कुमार आनंद बख्शी, आपने पूरी डिटेल्स भेजी है इस गीत की और इस गीत को बहुत पसंद किया है ऐसा सबने लिखा है। एक हमारे श्रोता है जिन्होंने इंग्लिश में मैसेज भेजा है और उनका मतलब ये है कि आज के इस प्रोग्राम में बारिश और लव सॉन्ग्स मेन अट्रैक्शन होगा। जी हाँ बिल्कुल। और हमारे दूसरे श्रोता हैं जो लिखते हैं अपना एक अनुभव साझा करते हैं कि शाम का मौसम बहुत बदला हुआ था। पिछले हफ्ते मेरी धर्मपत्नी और मैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने कश्मीर गए थे। शाम के समय हम बाबा बर्फानी जी के गुफा पहुंचे थे और इस तरह से मौसम का मजा लेते हुए जब वापसी में आ रहे थे तो लैंडस्लाइड होते हुए देखा। तेज बारिश, पत्थर गिरते देखे और यात्रा अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, बारिश जहां बहुत खूबसूरत लगती है वहीं अगर अति हो जाए किसी चीज की तो परेशानी भी देती है। तो कहते हैं ना कि हर एक चीज सही मात्रा में सही जगह सही समय सही लगती है और अगर वो ज्यादा हो जाए अति हो जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर देती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी की तरह बरसात भी हमें काफी दिनों से तरसा रही है और विविध भारती के सुरीले सफर में तो पिछले कुछ दिनों से गीतों की बौछार सावन लगातार छाया हुआ है लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, हम भी आपके साथ हैं इसमें। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं ये जो गीत है, इसमें वाद्य यंत्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है जहां शब्दों की गहराई उभर कर आती है और इसीलिए ये आवाज की ताजगी, थोड़ी सी हिचकिचाहट इस गाने के जो तरीके में चार चांद लगा देती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना और बिल्कुल सही तरीके से इस गाने के बारे में लिखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन की भीगी रातें इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से काट कर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता बल्कि बारिश की चादर में लिपट कर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही

सुरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा रेडियो सेट। प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतजार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतजार में, किसी के आने के इंतजार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है। लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतजार अच्छा लगता है, अगर यही इंतजार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए। इंतजार क्या आपने भी किसी को करवाया है, लंबा इंतजार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतजार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतजार करना या करवाना दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतजार करवाया हो या आपका किसी ने इंतजार किया हो बहुत लंबे समय तक, तो जरूर लिख भेजे, मैं इंतजार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे।

जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद रुक गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है, आकाश में काले काले बादलों का जमघट है, बहुत खूब। तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी और सरदर्द की शिकायत है, तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है, और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे, दादी की नजर हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज्यादा डांटना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतजार की जब बात कही गई है तो इंतजार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतजार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो बदलती हैं, तो कब किस समय किसका इंतजार है ये जरूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सके। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल जरूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना जरूर प्ले किया जाएगा। चलिए हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आरडी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: जय एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतजार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतजार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतजार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ जरूर जाता हूं, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंतजार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतजार करवाया, लेकिन इंतजार किया, लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज्यादा उदास हूं, आंखों को इंतजार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी और बाबा काफी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पहुंचकर उन्हें

ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतजार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है। जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतजार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है। यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतजार है, रातों को नींद का इंतजार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतजार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतजार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतजार है। हालांकि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतजार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज्यादा इंतजार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई। और ये जो इंतजार है, लंबा इंतजार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपीन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतजार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतजार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे किसी के आने की इंतजार हम करते हैं, लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं।

सकता क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार उन्हें हमेशा रहता था और ये इंतजार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो और वहां पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतजार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतजार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम, जिसे गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस वी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूं कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं। यहां पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है, तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप जरूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहे विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में, इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतजार हो रहा है। बिल्कुल इंतजार कीजिए और इंतजार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतजार रहेगा।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाज में गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना। अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है और बहुत जरूरी कहीं पहुंचना पड़ता है वो इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मजा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफर का इंतजार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतजार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम है एक के बाद एक दूसरे का इंतजार हमें जरूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज भी अत्यंत मधुर लगती है और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल हम भी इस चीज से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भरे संदेशों का। हम मिलेंगे जल्द ही, और सुरीला सफर से अनुराधा को दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं।

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया था।

0: सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणारंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया।
1: उन्नीस में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है।
0: अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए। अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जनसमुदाय स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
2: माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं हमेशा की परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गाऊंगा ही।
0: अध्यक्ष सभा स्थल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने शांतिपूर्वक वंदे मातरम का गायन शुरू किया। गायन समाप्त होते ही पूरे जन समुदाय के वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। उसके अगले अधिवेशन में पंडित जी वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए। वंदे मातरम का मुस्लिम समाज द्वारा पहला सार्वजनिक विरोध इसी प्रसंग में हुआ।

अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना ये बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनि मुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था।

काल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक।

0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी।
1: जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, 11 में से 8

0: प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष शांबुमूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था।
1: इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी, फिर भी थोड़े बहुत अधिकार कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिली, इसलिए बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
4: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
5: मिलो जो तुम्हें बताए।
4: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
6: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
4: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत के वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध

0: में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपनी घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं।

0: श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद हो आई, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: बिम बुम क बिम बुम क बिम बुम क
1: तेरी गजरी में लागा जोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गजरी में लागा जोर मुसाफिर जाग जरा

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एस टी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमति फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा

0: सब कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदनी फिल्म से अभी आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती। दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ कहां विविध भारती के स्टूडियो में और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई भी
1: रहती है, भैया भी आएंगे।
0: जी, तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे खसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती, पांच भाई थे।
0: अच्छा,
1: भाई के लड़के फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। फिर बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं, चार बहन है सबकी, सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ है मैडम। हम
0: हाउस वाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं। हाँ, बच्चे है, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: ये पान शॉप की है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में?
1: हाँ, दुकान में करते हैं सब, हम घर में नहीं करते कुछ।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना दीजिए, इसे समझो न रेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी, तो वैशाली जी बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से, अरे वाह। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है
0: जी। अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कोई नहीं, अब हमारी महीने ही शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था, फिर कहाँ से शादी हुई?
1: अपन महाराष्ट्र से, जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं। तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे साथ ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहली आएगी।
0: तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले हैं ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो...
1: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
0: ओ, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुनना तो अच्छा।
0: तो चलिए सुनते हैं। मेरा

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ दूध भाती, मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं। है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप बताइए?
1: पारस मनी फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आस्था हो और आने चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर, देवास से।
0: जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली है आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना। जी, तो घर में और कौन कौन है अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी तीन बेटियां हैं, तो दो की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो दो बेटियों की शादी हो गई है, तो वो आने वाली है मायके?
1: हाँ, मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही है?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ, वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों?
1: हाँ, मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। अभी हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में।
1: बहुत सुंदर सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़ मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप
1: खूब अच्छे से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा,
1: बस मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है?
1: नहीं नहीं मैम, जाऊंगी मैं क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में।
0: अरे वाह, तो घर में तो सब आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी जी मैम।
0: ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम।
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा पचोर।
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम
0: जी,
1: बहुत इंतजार रहता है। भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी मेरा, वो आने वाली है। मैम कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभी आए, लेकिन मेरी भाभियाँ ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले लिया है।
1: जी मैम,
0: है ना?
1: वो इंतजार करती है दीदी आ जाएंगे, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई एक बहन है, कोई दो बहने हैं, 3 बहने हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
0: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियाँ आपका इंतजार करती हैं।
1: मेरा इंतजार करती है, मैं कब भी नहीं जाती है
0: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना?
1: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
0: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और नंद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मजबूर पिक्चर का सुनना है, देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
0: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार को मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी।
0: तो आप खरीद लाएं या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी जी जी जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या

0: एक दिन के लिए आऊंगी और फिर मायके से सब लोग जिद करते नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी जी ऐसे होता ही है, लेकिन क्या है हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं। तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसे मेरी भी भाभी है वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती हैं। तो सभी का सोच के जाना पड़ता है। दीदी तो मैं हमेशा एक दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना। आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी,
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं और फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को उनकी भी तो बहनें हैं ना, वो लोग आए राखी बांधने के लिए। तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए
1: जी। आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं इशिका आप?
1: जी उज्जैन से।
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है।
0: अच्छा, क्या बात है। तो ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है ना?
1: मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा है, मेरे फादर इन लोग, वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में, मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है।
0: इसी साल?
1: यस मैम।
0: अच्छा, अरे वाह,
1: फैमिली अच्छी है मैम, बिल्कुल।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो
1: हाँ जी
0: आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इशिका। और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैम नमस्ते। पहले तो आपको
0: नमस्ते।
1: हाँ जी, मैं प्रमीला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से।
0: साबरमती से प्रमीला महेश
1: जी
0: जी, तो बताइए प्रमीला जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए।
0: जी यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ
1: हाँ
0: हैं।
1: जी
0: जी तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम, जी मैम ये

0: के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग है महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम। हाँ
1: अच्छा, तो मतलब आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
0: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना वाना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है।
1: क्या बात है, तो सखी
0: जी
1: सहेली और आपका तोरण बनाने का साथ,
0: जी
1: ये
0: मैम
1: हमेशा
0: बिल्कुल
1: साथ है।
0: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से।
1: प्रमिला जी,
0: जी
1: तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं, वही ये
0: हाँ जी
1: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है,
0: हाँ जी मैम,
1: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
0: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे,

0: अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया है अभी, वही है फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
1: तो
0: ऐसे। एक दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
1: जी
0: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
1: जी
0: यही दुख
1: जी
0: लगता है ज्यादा
1: जी। कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ, उसका सामना करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना?
0: शक्ति मिलती है मैम अभी,
1: जी
0: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
1: हाँ हम
0: एक तो यहाँ है, उनसे भी हम
1: जी
0: अच्छे
1: हम
0: रहते हैं, खुश
1: जी
0: रहते हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
1: बिल्कुल, आपकी आवाज सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी
0: जी
1: करते
0: मैम,
1: होंगे,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: ध्यान रखते हैं, बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने का
1: ये बात तो है।
0: और जाना
1: तो
0: भी पड़ता है मैम
1: और
0: फिर।
1: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
0: हाँ जी
1: बात कर सकते हैं, वहां से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती
0: जी
1: है ना?
0: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं,
1: सही
0: ऐसा है।
1: बात है जी। हाँ
0: हाँ जी
1: क्योंकि बार बार वहां जाना संभव नहीं
0: हाँ
1: हो
0: जी
1: पाता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
1: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ।
1: क्या बात है।
0: तो और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियाँ मिलती हैं हमें, है ना?
0: जी।
1: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए?
0: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन
1: जी,
0: और एक बेटा है प्रियन मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है।
1: क्या बात है।
0: बेटी उसकी बेटी है अलिश्का 8 साल की।
1: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी अब रक्षाबंधन, तो आपकी क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
0: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही है। मेरे दो भाई है, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था
1: जी।
0: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे
1: जी।
0: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
1: क्या बात है। तो आप सारी मिठाइयां आप बनाती हैं?
0: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर स्पेशली, मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में।
1: अरे वाह,
0: मेरे हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। 35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं। तो हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4.5 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज जांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो त्योहार अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदायी रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है
1: जी, वो महसूस कर पा रहे हैं।
0: बहुत याद आती है
1: जी। लेकिन मीना जी, यही है जो हमारे प्रिय है, वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका प्यार एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो अच्छी यादों को आप संजो के रखिए, उनके साथ बिताए, जो हंसी मजाक वाले जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो पहुंचा ही देंगे, है ना? जी जी बिल्कुल। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: बेहमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात है। तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी, पिपली बाजार में।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगाह जान की। जी
1: हाँ,
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेजी हो रही है। अभी गर्मी चल रही है क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी, फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है
0: जी, और उसके बाद तो फिर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है।
0: जी,
1: खास करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ
0: जी,
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यहाँ डल लेक है, वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी का
0: जी
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
0: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी कश्मीर
1: हाँ
0: सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए निगहत जान
1: जी,
0: आप।
1: मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। आप तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को,
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
0: जी उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ, चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज, और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही जाता।
0: तो ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
0: वो तो
1: अब तो
0: बस
1: साजन का ही इंतजार
0: आ ही रहे हैं सितंबर में बस आने ही वाले हैं, है ना? तो अब ये
1: बिल्कुल
0: इंतजार
1: बिल्कुल
0: का जो वक्त है
1: खत्म हो गए,
0: बिल्कुल खत्म होने को ही है। तो चलिए सुनते
1: बिल्कुल।
0: हैं इस गीत को।

आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश न हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 4002462, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था, बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थी। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे। पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के चार घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के एक माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले, हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

0: भगवान।
1: मैं मरता जा मित्रा,
0: तकता करता जा मित्रा,
1: किसी से झुकाता चल मित्रा,
0: जग पर चाहता।

कहाँ तक पहुँची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी। ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है। बाढ़, ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिएं। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं, उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन दो तीन महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई। जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़, चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे? 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होटल

होठों पर मुस्कुराहट थी पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है। ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया। गिनती में एक साथ

साल और कम हो गया। चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूँ, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ, ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाए क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें। थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाए, गाड़ी घेर ले, वो बात अलग है। जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई, क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था, टेबल लैंप जल रही थी, साइड की रैक में किताबें रखी थी, चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं, दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर? अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? फिर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहाँ 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहाँ केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो।

का मूल्य भी समझती हो और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं। देखेंगे, बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है। हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो। बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम्हें अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था और कितने सालों तक हमारे साथ रहा। याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एकटक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

0: चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक होठी, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही है। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना, चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो, मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सबसे मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुँचा सकूँ। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

अब आपको जानकारी दे दें, हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा की। पहले आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे आज शाम 5:30 पर और दोबारा रात 9 बजे से। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों का समय रहेगा शाम 7:30 से। हमारे केंद्र से कार्यक्रम नारी लोग प्रस्तुत करेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:05 पर, जिसके अंतर्गत सुनिएगा चर्चा, विषय रहेंगे इस्मत जगताई जन्मदिन जो कि मनाया जाएगा आज यानी 21 अगस्त को, दादा दादी नाना नानी की बातें, अनुभवों की सौगात, बारिश के मौसम में संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता है जरूरी, साथ ही सुनिएगा बातचीत पंकज जी सोनी जो कि नवजीवन वृद्धाश्रम में परामर्श करता है, विषय होगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर, इनसे बातचीत करेंगी पुष्पा सैनी और सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

हमारे केंद्र से कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे आज शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत होंगे कामकाज की बातें, बातचीत, लोक भजन, बाजार भाव और मौसम की जानकारी और फिल्म संगीत का मजा ले पाएंगे रात 10 बजे से।

अब एक नजर हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 9:30 पर और एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से अनुप्रसारित चिंतन सुनिएगा सुबह 6:05 पर। यहीं से 6:10 पर होगी वंदना। हमारी

से रामचरितमानस गान का अंग प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम खेती निवाद सुनिएगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 6:50 पर और वातायन का समय रहेगा सुबह 7:20 पर।

दिल के जज्बातों से लबरेज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ दिल से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत प्रसारित करेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:10 पर और दोबारा सुबह 11:00। और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे सुबह 11:30 पर।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। पेश कार्यक्रम नारी लोक।

नमस्कार बहनों, आकाशवाणी के नारी लोक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके साथ आज मैं हूं पुष्पा सैनी, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए बहनों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी छांव में बचपन और भी खूबसूरत हो जाता है। दादा दादी और नाना नानी के साथ बिताए पल, उनकी सुनाई कहानियां, उनके अनुभव और जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातें हमारे मन में हमेशा के लिए बस जाती है। किस्सों में बचपन की मिठास है, अनुभव में जीवन की सीख है और बुजुर्गों की बातों में हमारी संस्कृति और संस्कारों की सौगातें हैं। आज के नारीलोक में हम इसी अनमोल सौगातों की बात करेंगे, दादा दादी और नाना नानी के अनुभव और किस्से जो हमारी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। तो आइए कुछ पल उन प्यारी यादों के नाम करें और जाने कि हमारे बुजुर्गों के अनुभव आज भी हमारे जीवन को किस तरह समृद्ध कर सकते हैं। उनके बचपन की बातें, संघर्ष की कहानियां, त्यौहार की यादें और परिवार से जुड़े अनुभव हमें अपने जड़ों से जोड़े रखती है। उनकी एक छोटी सी कहानी में संस्कार छिपे होते हैं और उनकी एक सलाह में वर्षों का अनुभव और उनकी एक सीख में जीवन की सच्चाई होती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम मोबाइल और इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी कुछ पल अपने दादा दादी और नाना नानी के पास बैठकर उनकी बातें सुनिए। उनसे पूछिए आपका बचपन कैसा था या आपने अपने जीवन में सबसे मुश्किल समय कैसे पार किया। यकीन मानिए बहनों, उनके जवाब हमारे लिए किसी किताब से कम नहीं होंगे। बुजुर्गों के किस्से बीते कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए अनमोल निशानी होती है। आइए हम सभी उनके अनुभवों की इस सौगात को सुने, संजोए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। यही उनके प्रति हमारा सच्चा सम्मान और अपनी विरासत को संभालने का सुंदर प्रयास होगा।

0: बहनों, उम्र बढ़ना जिंदगी की रफ्तार का रुकना नहीं है, बल्कि अनुभवों की किताब का और भी समृद्ध होना है। हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार और समाज की वह धरोहर है, जिनके अनुभवों में जीवन की अनेक सीख छिपी होती है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आज नारी टॉक में हम बात करेंगे वरिष्ठजनों के सम्मान, उनकी जरूरतों, उनके अधिकारों और परिवार तथा समाज की जिम्मेदारियों पर। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है समाज सेवी श्री पंकज जोशी जी, जो नवजीवन वृद्धाश्रम बांसवाड़ा में सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। नमस्ते पंकज जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत का अवसर देने के लिए। मैं आकाशवाणी और नारी रोग कार्यक्रम का आभारी हूँ।
0: पंकज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई है और इसका मूल उद्देश्य क्या है?
1: इस दिवस का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के योगदान और अनुभवों का सम्मान करना, उनके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करना है। हमें यह समझना चाहिए कि एक वरिष्ठ नागरिक परिवार और समाज पर बोझ नहीं बल्कि अनुभव की कुंजी है।
0: बहुत सही बात कही सर आपने। सर, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है, आपके अनुभव में आज वरिष्ठ नागरिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
1: मेरे अनुभव में अकेलापन और संवाद की कमी बड़ी चुनौतियां हैं। आज परिवार में व्यस्तता बढ़ गई है, कई बार बुजुर्गों को आर्थिक सुविधा तो मिल जाती है लेकिन भावनात्मक अपनापन और पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।
0: जी सर, बहुत सही बात कही आपने। सर, आप नवजीवन आश्रम बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं, वहाँ काम करते हुए ऐसा कौन सा अनुभव रहा है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है?
1: वहाँ मैंने महसूस किया है कि वरिष्ठ जनों को सबसे ज्यादा जरूरत अपनत्व की होती है। उनके साथ कुछ समय बैठना, उनकी बातें सुनना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इन छोटी छोटी बातों का उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: आपने बहुत सही बात कही कि इन छोटी छोटी बातों का उनके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पंकज जी, परिवार अपने बुजुर्गों को सम्मान और खुशी देने के लिए रोजमर्रा के जीवन में क्या कर सकता है?
1: परिवारों को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए और उनके अनुभवों को महत्व देना चाहिए। साथ बैठकर भोजन करना है, उनकी पसंद का ध्यान रखना है और समय समय पर उनकी जरूरत पूछना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि उनको अकेलापन महसूस नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है इसमें अब अकेलापन बहुत इंसान महसूस करता है, तो ये हमें चाहिए कि हम उनको अकेला ना छोड़े, उनसे बातचीत करें ताकि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी जी
0: सर, क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों से पर्याप्त सीख ले रही है?
1: इस दिशा में अभी और प्रयास की जरूरत है। बुजुर्गों ने जीवन में अनेक परिस्थितियां देखी है, युवा यदि उनके अनुभवों को सुने और उनसे संवाद करें तो उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन मिल सकता है।
0: जी सर, वरिष्ठ नागरिक स्वयं अपने जीवन को सक्रिय और खुशहाल बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं?
1: उन्हें अपने रुचियों को जीवित रखना चाहिए, पढ़ना, संगीत सुनना, बागवानी, योग या हल्का व्यायाम, मित्रों से मिलना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना मन को प्रसन्न रखता है। अपनी क्षमता के अनुसार समाज सेवा करना भी बहुत संतोष देता है।
0: तभी तो हमने देखते हैं कि जो भी बुजुर्ग रहता है, कोई बागवानी में रुचि ले रहा है, कोई संगीत में रुचि रहा है, जो उन्होंने जवानी में नहीं किया वो स्वयं अपने जो भी इच्छाएं वो पूरी करते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई संगीत सुनता है, कोई पढ़ता है, कोई योग करता है, कोई

0: सामाजिक कार्यकर्ता है तो उन्हें करते रहना चाहिए, तभी वो जो अकेलापन है उसको भूल सकते हैं। सर, स्वास्थ्य के अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है?
1: बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और भावनात्मक खुशी भी जरूरी है। परिवार का प्यार, सम्मान और बातचीत उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। उन्हें अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, समाज वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय और सम्मानजनक जीवन देने में किस तरह का योगदान कर सकता है?
1: समाज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिलन केंद्र, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और मनोरंजन के अवसर होने चाहिए। उनके अनुभवों का उपयोग सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में भी किया जा सकता है।
0: जी सर। सर, आज नाडी लोग सुन रहे उन परिवारों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता या फिर दादा दादी हैं?
1: बुजुर्गों को केवल सुविधाएं देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें आपका समय और सम्मान भी चाहिए। उनके साथ बैठकर बात कीजिए, उनकी पुरानी यादें सुनिए और उनकी राय को महत्व दीजिए। याद रखिए, जिस उम्र में वे आज हैं, कल हम भी उसी उम्र में होंगे।
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस उम्र में वे आज हैं, कल हम भी उसी उम्र में होंगे। ये बात हमें बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ भटकते जा रहे हैं। वो अपने बड़ों का या बुजुर्गों के लिए इतना समय निकाल सकते हैं, ना उतना मान सम्मान कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि बुजुर्गों के लिए सम्मान दे और उनके लिए कुछ समय उनके लिए निकाले, उनसे बैठ के बातें करें ताकि वो अपना दुख सुख भी उनके साथ साझा कर सके। सर, आखिर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर अब वरिष्ठ नागरिकों को नई पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या होगा?
1: वरिष्ठ नागरिकों से मेरा संदेश है कि अपने उम्र को अपनी कमजोरी ना समझे, आपका अनुभव आपकी शक्ति है। और नई पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे सीखें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। एक संवेदनशील समाज वही है जो अपनी हर पीढ़ी का सम्मान करता है।
0: पंकज जी, आपने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी भावनात्मक जरूरतों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमसे बातचीत की। श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार से जुड़े हैं, उनकी छाया से हमें संस्कार मिलते हैं और उनके अनुभवों से जीवन की राह आसान होती है। आइए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर हम संकल्प लें कि बुजुर्गों को केवल एक दिन सम्मान नहीं देंगे बल्कि हर दिन उन्हें समय, सम्मान और अपनापन देंगे, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों की मुस्कान रहती है उस घर में अनुभवों की पहचान रहती है। नमस्ते पंकज जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहनों, इस संदेश से पहले हम बात कर रहे थे पंकज जी जोशी से, और बहनों हम अब बात करते हैं हिंदी उर्दू साहित्य की ऐसी बेकाब और सशक्त लेखिका की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से महिलाओं के जीवन, उनकी इच्छाओं, संघर्षों और सामाजिक बंधनों को आवाज दी। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं लेखिका इस्मत चुगताई की। इनका जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उन्होंने ऐसे समय में लिखना शुरू किया जब महिलाओं के जीवन और उनकी भावनाओं पर खुलकर बात करना आसान नहीं था, लेकिन इस्मत ने रूढ़ियों से डरने के बजाय उन्हें अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय परिवारों का जीवन, स्त्री पुरुष का संबंध, महिलाओं की आजादी और समाज में मौजूद असमानताएं प्रमुख रूप से दिखाई देती थी। उनकी प्रसिद्ध कहानी लिहाफ में साहित्य जगत में बहुत चर्चा हुई और विवाद भी बहुत हुए, लेकिन यही उनकी लेखने की खासियत थी। वे उन विषयों पर लिखती थी जिन पर समाज चुप रहना पसंद करता था। इस्मत चुगताई केवल एक लेखिका नहीं थी बहनों, बल्कि उनकी बेबाक आवाज के लिए पहचाने जाने वाली एक साहित्यकार थी। उन्होंने महिलाओं को केवल सहन करने वाली पात्रों के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सोच और इच्छाओं वाले स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। आज जब वह महिला अधिकारों और समानता की बात करते हैं, तब इसमें चुगताई की साहित्य हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछना और अपनी बात कहना भी बदलाव की एक शुरुआत होती है। उनकी लेखनी आज भी हमें यही प्रेरणा देती है, अपनी आवाज को पहचानिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़िए। तो बहनों, ये था हम लेखिका इसमें चुगताई के बारे में बात करते, और आइए आपको एक बार फिर ले चलते गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते प्यारा सा नगमा।

0: बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो
0: जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: धन और रिश्तों में मिठास हो, जीवन में मुस्कान रहे, हर कदम पर नारी के हौसलों की पहचान रहे, अपने सपनों को फंक देकर आगे बढ़ते रहिए। इसी संदेश के साथ आज के नारी लोक कार्यक्रम से मैं पुष्पा।

0: अभी नारी लोक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं FM 101.3 MHz पर। शाम के 5:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म के गाने के साथ। अनजान है गीतकार और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

अलग लगाना हमने लिया है फूल और कांटे फिल्म से, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल और तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: मेरे पिया बेरंग किया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तेनी।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
10: तुम्हारी याद सताती है
7: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
11: विविध भारती राष्ट्रीय

सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में सड़क फिल्म का गाना। समीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: आइए अब सुना जाए किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाजों में अमरत्पर एंथनी फिल्म का गाना। आनंद बख्शी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own Baba Fate!
2: What?
3: My name is Anthony Gonzalez.
2: What was this?
3: Right? My name is Anthony Gonzalez.
2: Wow!
3: My

0: आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 400।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट, मैं

0: Obviously, such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
1: What?
2: अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, आज देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डरती है।

0: जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: खाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: हाउ क्यूट।

0: किस्मत वाले, और जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: श्रोताओ, अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और अनु मलिक की आवाजों में, जीते हैं शान से, यह है फिल्म का नाम। इंदिवर और शैली शैलेंद्र ने लिखा इसे, अनु मलिक ने बनाई है तर्ज़।

0: मैरी नहीं मांगता, हमको लिली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। श्रोताओं, तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:05 से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद

0: राजमार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए सुनिए विजय और साथियों की आवाजों में अंजान का लिखा और बपी लहरी का संगीतबद्ध क्या गाना, फिल्म का नाम डिस्को डांसर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है।

0: जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: भारूड एक ऐसी कला है कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए बजरो सुल्तानपुरी का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम कालिया।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुझे बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर। कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
6: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
7: अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से कार्यक्रम तराने नए पुराने, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में मोहब्बतें फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। यहीं से होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न, पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 साल किया। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पीएम श्री विद्यालयों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ये बिल सदन में प्रस्तुत किया। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोकने का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल के बीच मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की, वहीं भाजपा विधायक और मंत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर सदन में हंगामा किया। इससे कार्यवाही बाधित हुई और 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को प्रभावी बनाने की जरूरत है। आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि ये समय उत्तरदायित्व से भरे हुए पर्यटन पर विचार करने का भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत में पर्यटकों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास की भी जरूरत है।
2: पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा उछाल आया। और चौथा था टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन। ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर सीमलेसली ट्रेवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में जयपुर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी बनी। श्री शेखावत ने बताया कि आने वाले समय में इस घोषणा पत्र में साझा किए गए विषयों से पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। इससे जयपुर को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक से पहले जयपुर में कल और परसों ब्रिक्स पर्यटन कार्य

0: समूह की बैठक हुई थी। इसमें एआई, कौशल विकास और पर्यटकों के लिए सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उन युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर खुशी हुई जिन्होंने एक नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थानांतरण और पदस्थापन आदेशों की पालना के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की घोषणा से पहले तबादले और पोस्टिंग के लिए जारी किए गए आदेशों का क्रियान्वयन हर हाल में 24 अगस्त तक सुनिश्चित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भर्तियों को लेकर कहा है कि यदि चुनाव घोषणा से पहले नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं तो खाली पदों पर पदस्थापन किया जा सकता है। आयोग ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने मतदान कार्मिकों का पहला रेंडमाइजेशन किया। इस दौरान नगर निकाय आम चुनाव के लिए नियुक्त मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों का रेंडमाइजेशन किया गया। ये प्रक्रिया निर्धारित नियमों और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले साल के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए ये फैसला दिया। पीठ ने कहा है कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि पीएम श्री विद्यालय राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्य स्तरीय वेबिनार 2 की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, परीक्षा परिणामों में गुणात्मक सुधार आया है और डिजिटल डैशबोर्ड तथा स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से तकनीक का प्रभावी समावेश हुआ है।
1: सारे पीएमसी स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है और जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का ये बढ़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सब जगह देखा गया। कई प्रिंसिपल्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी बताया है। काफी लोगों ने हरियाणा राजस्थान में भाग लिया है, विस्तृत रूप से प्लांटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का इस पर शिक्षा को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत बृहद प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हम सारे बैठ के जो डिसाइलोइजेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट

0: प्रैक्टिसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशन हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है।
1: वेबिनार में प्रदेश भर के चयनित पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों और जिला तथा ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों ने प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग की राष्ट्रीय सूची में प्रदेश के 11 विद्यालयों ने स्थान हासिल किया है। इनमें 3 पीएम श्री विद्यालय शामिल है। राज्य में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 प्रतिष्ठानों पर सर्वे में लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की कर अनियमितताएं उजागर की है। कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाताओं ने कुल 2,03,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि स्वेच्छा से जमा कराई। इन कार्रवाईयों में जयपुर, भिवाड़ी, संगरिया और श्रीगंगानगर स्थित प्रतिष्ठान शामिल है। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकरणों में जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे केवल वास्तविक और वैध लेनदेन के आधार पर आईटीसी का दावा करें और जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का पूरा पालन सुनिश्चित करें। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत झुंझुनू मेडिकल कॉलेज समसपुर परिसर में जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक करना रहा। मेडिकल कॉलेज, वन विभाग, विभिन्न विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर में करीब 1,000 पौधे लगाए गए। इस दौरान अधिकारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण में भाग लिया। कोटपुतली बैरोड जिले की श्रीमती पाना देवी मोरिजवाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के अंतर्गत पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में अंगदान के महत्व का संदेश प्रसारित करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न, पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 साल किया। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पीएम श्री विद्यालयों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्यामलाल ने तैयार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में नगर परिषद नागौर तथा नगर पालिका बासनी, जायल, कुचेरा और मुंडवा में, जबकि दूसरे चरण में मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड, डेगाना और रियामबड़ी में चुनाव होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। सदस्य पदों के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को की जाएगी और नाम वापसी 3 सितंबर को होगी। चुनाव चिन्ह 4 सितंबर को आवंटित किए जाएंगे। जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंसधारियों को अपने हथियार 21 अगस्त तक संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित श्रेणियों में शामिल बैंक सुरक्षाकर्मियों, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस और होमगार्ड को इससे छूट दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिले के 9 निकायों के 285 वार्डो के आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई है। कुल 285 वार्डों में 28 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जाति महिला, 36 अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और 60 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं। 126 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। वहीं पंचायती राज चुनाव के लिए नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों की जिला प्रमुख की सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर नागौर खेल स्टेडियम

में जिलास्तरीय समारोह गरिमा पूर्वक मनाया गया। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। विद्यार्थियों ने व्यायाम, योगासन, लेजियम और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महिला पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 56 प्रतिभाओं और कार्मिकों को प्रशंसा पत्र और पारितोषिक दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली भी निकाली गई। कलेक्ट्रेट से गांधी चौक तक निकाली गई रैली में अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों के जवान, एनसीसी कैडेट, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। बीते महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेघाना के तिलानेश गांव में ग्रामीण

0: में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेघाना के तिलानेश गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने किसानों से खेती उपज और सिंचाई की जानकारी ली। महिलाओं के साथ खेत में निराई गुड़ाई में भी हाथ आजमाया। बुजुर्गों से उनकी समस्याओं और युवाओं से शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शिव सागर तालाब की पाल पर पौधरोपण किया। उन्होंने गांव में पुस्तकालय सह अटल ज्ञान केंद्र, सड़क निर्माण और तालाब के सौंदर्यीकरण से जुड़े कामों की घोषणाएं भी की। खरीफ फसलों में सूत्रकृमि की समस्या को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क किया है। मूंग, ग्वार, बाजरा और ज्वार की फसलों में पौधों की बढ़वार रुकने, पत्तियां पीली पड़ने और जड़ों में गांठें बनने जैसे लक्षण दिखाई देने पर जांच की सलाह दी गई है। किसानों से बिना विशेषज्ञ की सलाह के कीटनाशक या निमेटिसाइड का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। विद्यालयों में विधिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम और शिकायत के विभिन्न माध्यमों की जानकारी दी जा रही है। विद्यार्थियों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भी जानकारी दी जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नागौर जिले में 2,90,136 वंचित पात्र लोगों को योजना का लाभ मिला है। इसी तरह नागौर जिले में चुनावी तैयारियों के साथ जनकल्याण, कृषि जागरूकता और सामाजिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसी के साथ नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, विधानसभा में विपक्ष रा हंगामा बीच समान नागरिक संहिता बिल पेश, सदन री कार्रवाई अनिश्चित काल सारू टड़ी। जयपुर में ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियों ने मीटिंग हुई। सैर सपाटा रा हलका में भिड़ी रणनीति और मदद बधावन माथे एक राय बनी। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा में सारू 3 साल री वकालत री जरूरत न घटार 1 साल की नी। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो पीएमसी विद्यालय राज्य में चौखी और नुआ जमाना री भाई लिखाई रा आदर्श केंद्र रा रूप में एक खास पहचान बनाई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अब समाचार विगतवार। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश किनो। बिल पेश हुआ पाछे कांग्रेस रा विधायक सदन री कार्रवाई में शामिल नहीं भया। इन पहली सदन री कार्रवाई शुरू हुए तई विपक्षरा नेता टीकाराम जूली कांग्रेस रा विधायक ने विधानसभा रा खास दरूजा मथे रोकण रो मुद्दो उठार ई मथे चर्चा करावन री मांग कीनी। स्पीकर वासुदेव देवनानी प्रश्नकाल बीचे ओ मुद्दो उठावन री मंजूरी नहीं दीनी। ई पाछे कांग्रेस रा विधायक वेल माय नारा लगावन सागे हंगामो करण लाग्या। दूजी कानी भाजपा रा विधायक कांग्रेस रे खिलाफ नारा लगाया। इनो कामकाज माय अड़चन आई और सदन री कार्रवाई 2 दफा टालनी पड़ी। कार्रवाई ओजू स्वरूप हेमण पनाई कांग्रेस रा विधायक रो हंगामो चालतो रहो जिमने देखता था का स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन रा 6ठा सत्र री कार्रवाई बेमियादी भगत सारू टाल दीनी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा बढ़ता उपयोग न ध्यान रखता थका सैर सपाटा रा हलका में आई इनमें असरदार तरीकों काम लेवन री जरूरत है। वह जयपुर में ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियों ने मीटिंग पूरी हुई पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। शेखावत कहो कि मौजूदा दौर जिम्मेदारियों भरिया सैर सपाटा माथे विचार करन रो है। वह कहो कि लाडला 10 साल में भारत में सैलानियों की तादाद 3 गुना बथी है। पर्यटन मंत्री कहो कि सैर सपाटा न ध्यान रखता थका ई हल्का में आई कौशल विकास री जरूरत है।
2: पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और

0: पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा उछाल आया, और चौथा था टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन। ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर सीमलेसली ट्रैवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की।
1: केंद्रीय मंत्री बतायो कि ब्रिक्स देशों ना पर्यटन मंत्रियों ने मीटिंग माए जयपुर घोषणा पत्र तैयार करी चियो। मीटिंग माए ब्रिक्स देशों बीच सैर सपाटा रा हल्का माए भेली रणनीति और एक दूजारी मदद बधावन रे बारा माए एक राय बनी। श्री शेखावत बतायो कि आवता भगत माए घोषणा पत्र माए साझा करी चिया मुद्दाओं सैर सपाटा रा हल्का माए नुआ आयाम बनेला जाऊ जयपुर ने बत्तो फायदो मिलेला। ध्यान जोग है कि ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियों की मीटिंग में पहली काल हर 19 अगस्त में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की मीटिंग रखी जी ही, जिनमें एआई कौशल विकास हर सैलानिया सारू सुविधा में बढ़ोतरी समेत कई खास मुद्दा माथे चर्चा करी जी। दूजी कानी पुणे में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सदारत में ब्रिक्स देशों रा संचार मंत्रियों की मीटिंग रखी जी। इनमें ब्रिक्स रा सदस्य देशों रा संचार मंत्री सूचना संचार प्रौद्योगिकी डिजिटल बदलाव और नुआ कामना रा बारा माय सहयोग मजबूत करने मत विचार कीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष हल्काओं जुड़िया 20 स्टार्टअप रा मुख्य कार्यकारी अधिकारियां और स्टार्टअप शुरू करने वाला सागे बातचीत कीनी। इस मौके वे कहो कि देश रो अंतरिक्ष हल्को वैश्विक प्रतिभा कंपनियां और निवेश खींचने रो केंद्र बन सके है। इस पाछे सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि मान्य नौजवान कारोबारियां और नुआ काम करने वालों मिलर खुशी भी जो एक नुआ और चुनौती वाला हल्का माए ध्यान जोग हिम्मत रो दर्शाव कीनो। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव रा ऐलान पहली करी जा तबादला और पोस्टिंग सारू जारी हुकम री पालना 24 अगस्त ताई तय करावण सारू कहो है। राज्य निर्वाचन आयोग कहो कि चुनाव रा ऐलान पहली नियुक्ति रा हुकम जारी भेवण री सूरत माए रीता ओहदा माथे पदस्थापन करियो जा सके है। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव 2026 री तैयारियां चल रही है। आज चित्तौड़गढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू चुनाव ड्यूटी वाला कर्मचारियों रो पहलो रेंडमाइजेशन कीनो। इस दौरान नगर निकाय आम चुनाव सारू बनाई जी पोलिंग पार्टियां रा पीठासीन अधिकारी प्रथम द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियां रो रेंडमाइजेशन करी चियो। जालौर माई मास्टर ट्रेनरों री सिखावण रो कार्यक्रम रखी चियो। पाली माई वोटर लिस्टा माई नाम मंडावण समेत न्यारा न्यारा जरूरी बदलाव करण सारू मतदान केंद्रा मथे खास शिविर लगाया जा रहा है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा देवन सारू एलएलबी डिग्री हासिल करण वाला बाबत जरूरी 3 साल री वकालत रा अनुभव री जरूरत न घटार 1 साल कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ए जी मसीह और के विनोद चंद्रन रिपीट ओ फैसलो दीनो। पीठ कहो कि 25 मई 2025 में 31 मार्च 2027 पीछे भर्तियां सारू निकाली जी न्यायिक सेवा परीक्षा देवन सारू उम्मीदवार पहली रा अनुभव बगैर ही पात्र भैला। हालांकि आ परीक्षा माए चुनी चिया उम्मीदवार ने नियुक्ति सरू माए प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियां रा तौर भैला। माने न्यायिक अकादमी माए 1 साल री सिखावण लिया पाछे 1 साल रो व्यवहारिक प्रशिक्षण लेवण भैला। ध्यान जोग है कि सुप्रीम कोर्ट लाडला साल 20 मई ने एलएलबी करोड़ा नुआ लोगों ने प्रवेश तरी न्यायिक सेवा परीक्षा देवन रोक बिना हा और इन सारू कम 3 साल री वकालत रा जरूरी अनुभव री व्यवस्था दीनी ही। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो है कि पीएमसी स्कूल राज्य में बेहतर क्वालिटी और नुआ जमाना री भुनाई लिखाई रा आदर्श केंद्र रा तौर पहचान बना रहा है। वे आज जयपुर पीएमसी स्कूल रा संस्था प्रधान सागे राज्य स्तरीय वेबिनार माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो कि आ स्कूल माए नाम मंडावन वाला विद्यार्थियों की तादाद बढ़ी है। इम्तिहान रा नतीजा माए गुणात्मक सुधार आयो है। वे हर महीना 10 संस्था प्रधान सागे बातचीत करण और सब चोखा अभ्यासा ने पूरा प्रदेश माए लागू करण रा हुकम दीना।
2: सारे पीएमसी स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है और

0: जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का ये बढ़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सब जगह देखा गया। कई प्रिंसिपल्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का भी बताया है। काफी लोगों ने हरियाणा राजस्थान में भाग लिया है, विस्तृत रूप से प्लांटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का इस पर शिक्षा को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत बृहद प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हम सारे बैठ के जो डिसाइलोइजेशन है, रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशन है, इसके बारे में चर्चा हुई है।
1: वेबिनार में प्रदेश भर और चुने जी पीएमसी स्कूलों का संस्था प्रधान और जिला और ब्लॉक स्तर का शिक्षा अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीकों शामिल थिया। ध्यान जोग है कि शिक्षा मंत्रालय कानून जारी करी जी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग री राष्ट्रीय सूची में प्रदेश के 11 स्कूल शामिल है, जमा 3 पीएमसी स्कूल ही भेड़ा है। जयपुर, भिवाड़ी, संगरिया और श्रीगंगानगर में कारोबारी प्रतिष्ठान माथा करी जी जीएसटी सर्वेरी कार्रवाई में 5 करोड़ रुपए बत्ती टैक्स गड़बड़ियां उजागर हुई है। कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाता 2,03,00,000 रुपए बत्ती रकम जमा कराई। जीएसटी विभाग टैक्स देवन वालों केवल असल और कानूनी लेन देन रा आधार इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC रो दावो करण और जीएसटी कानून री पालना तय करण री अरज कीनी है। हरियाणा राजस्थान अभियान रा तेत झुंझुनूरा मेडिकल कॉलेज परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम राखी चियो। मेडिकल कॉलेज, वन विभाग, न्यारी न्यारी स्कूल और सामाजिक संस्थान री ओर मिलर राखी जाए। कार्यक्रम रे दौरान कॉलेज परिसर में करीब 1,000 पौधा रोपी चिया। कोटपुतली बहरोडरा पाना देवी मुरीजवाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज अंगदान जीवन संजीवनी अभियान रा तेत पोस्टर, निबंध और नारा लिखन री होड़ा राखी ची। आरो मकसद टाबरिया में अंगदान रा प्रति जाग जगावण और समाज में अंगदान रा महत्व रो संदेश न बतावण हो। सवाई माधोपुर जिला में रणथंभौर बाघ परियोजना रा दूनोदा गांव में तेंदुआ रा हमला रे कारण एक टाबर री मौत पाछे उपजो तनाव गांव वाला और वन प्रशासन बीच सहमति पाछे खत्म फेंक्यो है। ई पाछे लाश रो पोस्टमार्टम कर रेलवान परिवार वाला ने सौंपती री ची। उप वन संरक्षक प्रथम मानस सिंह बतायो कि मरण वाला रा परिवार वाला ने संविदा रा आधार नौकरी देवन और नियम रे मुजब उचित मुआवजो देवन रे बारा में सहमति बनी है। तेंदुआ ने पकड़वा सारू वन विभाग की टीम खास ऑपरेशन चला रही है। नई दिल्ली में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत री त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्री जोड़ी महिला डबल्स होड़ रा सेमीफाइनल में पूग की है। भारत री जोड़ी पहला सेट में पिछड़िया पाछे चौथी वरीयता वाली चीन री जिया यी फैन और जांग शो श्यान री जोड़ी ने 16-21, 21-15, 21-13 शिकस्त दीनी। ई जीत सा गई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत रो एक तमगो पक्को फेंक्यो है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में लाला 15 साल में महिला डबल्स रो ओ भारत रो पहलो तमगो फैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित किया जावन वाला इन कार्यक्रम री 137वीं कड़ी फैला। इन सारो आप ही 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे राय भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। विधानसभा में विपक्षरा हंगामा बीच समान नागरिक संहिता बिल पेश, सदन री कार्रवाई अनिश्चित काल सारू टड़ी। जयपुर में ब्रिक्स देशाना पर्यटन मंत्रियों ने मीटिंग भी। सैर सपाटारा हल्का में भरी रणनीति और मदद बधावण माथे एक राय बनी। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा में सारू 3 साल री वकालत री जरूरत न घटार 1 साल कीनी। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो पीएमसी विद्यालय राज्य में चौखी और नुआ जमाना री भाई लिखाई रा आदर्श केंद्र रूप में खास पहचान बनाई। इस आगे प्रादेशिक समाचार।

FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं।

चौपाल कार्यक्रम हमर वरा सब ग्रामीण भाई बोने धर्मिष्ठानो राम राम राम राम। देखो भाई बोने आप खेती बाड़ी नु काम काज करवा में लागे था कहा केम के अड़े जी भी खरीफ नी फसल नी बुआई वगैरह करी है तेनी हार हमार करवानो आ टाइम साली रहतो कोय ने सब भाई ने लागे था कहीं केम के देखो अड़े लगातार पानी वगैरह पड़ी रहतु तो इन्हें हाथे पास खत पतवार खूब थी गयो है जंगली पौधा वगैरह उगी गया ही ने हाथे कई कीट वगैरह ने भी समस्या है तो इनु भी काम काज करी रहता कहीं ने अपने तेरे खेती बाड़ी करवा वाला किसान भाई ने बहने तो अपन हमेशा खेती बाड़ी नु ध्यान रखू जरूरी है किम के अपने आ खरीफ नी फसल में तो अपने खास कर ध्यान रखू पड़े किम के आ खेल वगैरह खूब थी जाए तो इन्हें कारण जी अपने खातर वगैरह ना कहो दवाई वगैरह ना कहो तो इन जो गुण लगवा जो अपने फसल में एवं नहीं लगे ने खास आ जंगली पौधा वगैरह उगी जाए तो आप खातर नाखी रहता पोषक तत्व तो पूरा नहीं मिले ने जे नहीं मल्वा जो मिली जाए तो इन्हें कारण अपने थोड़ी समस्या आई सके एटले खास कर अपने जो खतपतवार नियंत्रण नु काम काज करी रहता कहो तो इन खास कर ध्यान रखू है बाकी अपने फसल भी अच्छी साली रही थी कि अपने मन में रहे कि भाई पानी अच्छू वगैरह पड़ी जाए टाइम मैं अपने पानी जरूरत थी अंदर पड़ी गयु बंद थी गयु ने पासो वेस में जरूरत भी पड़ी गई थी एम लगी दी तो कि ना भाई अपने फसल पानी मांगी रही है तो पानी भी वगैरह पड़ी गयु ने अपने फिर पासो रुकी भी गयु है एटले अपने जो जी रू एवं अपने तक तो फसल ने मन खुशी लगी रही है कि सब किसान भाई ने कि ना भाई अपनी फसल अवड़े तक तो बढ़िया है ने बस तो अपने भगवान ने भरोसे जे हो खरी करे खरी एटले इन हिसाब थी काम कर रहा पर आप तो है कि ना भाई कर्म करते रहो फल की इच्छा मत रखो क्योंकि आप जी भी मेहनत करेंगे वो अपने पाकी ने तो अलग हस पर आप टेन टेम मैं कार्यक्रम माध्यम थी कीस कहो कि अपने जो भी काम काज करव ध्यान थकी सावधानी थकी करव जरूरी है क्योंकि अपने सावधानी हटेगा तो दुर्घटना भी थी सके एटले खास कर आनी बात अपने ध्यान रखू आम सोरा माध्यम थी कीस कहो कि आप जे भी खेतीवाड़ी नु काम काज है ये समय ने अनुसार फसल चक्र ने अनुसार थी जाए तो बढ़िया रहेगा पेरवानु काम टाइम मे थी जाए तो उगी भी आ जाएगा वेस्ट में अपने सिंचाई वगैरह करवी पड़े खातर नाखव पड़े दवाई नु भी उपयोग करव पड़े तो टेम टेम में तो इन बात अपने बराबर ध्यान राखी लीधु तो अपन कोई तरह की समस्या नहीं आएगा जो पानी वगैरह है तो ये तो मेघ बाबा की मर्जी अपने हाथ में तो है नहीं कि पानी आज पड़ी जाए नहीं पड़े अपने ना कहवाते कि पड़ी जाएगा नहीं कहवाते कि नहीं पड़ेगा वो तो है नहीं पर अपने हर तरह की सावधानी रखनी जरूरी है क्योंकि लगातार कि पानी वगैरह पड़ी जाए तो आज सोयाबीन वगैरह फसल ही खास कर शाक सब्जी वालू काम अपने कर रहता कहो तो इनमें भी अपने समस्या आई सके बदा पानी वगैरह भराई रहे तो ये पौधा वगैरह हड़ी जाए पीरा पड़ी जाए कि नुकसान थी सके पर अपने तक तो एवं है नहीं समस्या आई नहीं पर आप कहो कि ना भाई ध्यान हर सीजन नु राखू है कि ना भाई आ थागा तो आ हरते करूंगा ने अपने तो खूब आ किसान भाई बहने तो खूब आम जागरूक थी गई है कि ना भाई हर तरह थी कि ना भाई आ काम काज करव जरूरी है ने अपने जी शाक सब्जी वालू काम भी कर रहे थे कि बहने ने भाई शाक सब्जी बुवाई वगैरह भी नर्सरी ला तकी ला रोप तैयार कर लगाड़ी रहता कहीं कोई हूं कर क्योंकि देखो फल वगैरह अनाज वगैरह जो है ये अनाज आ तरह चार महीने अपने मेहनत करी पड़े पास पाकी ने मल तारा अपने देखा ने जी आ शाक सब्जी वालू काम है फूलों की खेती वगैरह वालू है ये अपने है कि भाई एक तरह की नगदी फसल है कि महीने बे महीना में आठ दाड़ा पंद्रह दाड़ा में तैयार थी अपने मिली जाए तो अपने रोज ने जी काम ही ये अपने तैयार थी जाए तो ये फल सब्जी तोड़ी रोज वेसी आओ रोज अपने जो काम है कर सको एटले बातों अपने ध्यान रखू घणु जरूरी है एटले हर काम में कही सकते कि भाई समय ने अनुसार थी जाए खास कर कोई भी आ रोप वगैरह लगाड़ा तो कोई कीट वगैरह हो या कोई लागी रहे ना भाई आ रोप में कई रोग वालों हो तो लगाड़ीस नहीं क्योंकि एक फसल में रोग फसल होगा या कोई फल सब्जी या अपने कोई रोग गलत आ रो तक इनमें कोई गलत लागी रो ना भाई आ खराब थी रो तक तो रोपीस नहीं क्योंकि एक रोग खराब होगा तो पूरी फसल में भी नुकसान से

देखो किसान भाई बहनों, आज आटली बातचीत भी करी, किसान भाई थी भी बात करी, संदेश भी हमरिया ना, गीत भजन भी हमरियो, पर वात करवानी इच्छा भी हती, पर आ टाइम नु मान राखवो पड़े। आज तो आपणे सूटा पड़ा ने अगला कार्यक्रम में फेर मलंगा। राम राम, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 9 बजे का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक, CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: खेतीबाड़ी कार्यक्रम की वार उड़ीकता सगला किसान साथियों ने अभिलाषा पारी के उर्सू नहीं बेरी राम राम सा, और नरपत भाई आपने भी हमारी उर्सू घनी घनी राम राम सा।
4: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम, और साथ ही अभिलाषा बहन आपने भी राम राम
3: घनी घनी राम राम सा।
4: देखो अभिलाषा बहन, बार आपने जो खरीफ की फसल छे
3: जी,
4: तो बिन बार ये कृषि कार्य छे कि बम बार अब खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में अपने बोया था पा, तो बाका कार्यों के आये लोग की अधिकांश फसल बार बडवार की अवस्था में आ गई
3: जी सर।
4: कुछ फसल में फूल आवा भी लागा, बालिया भी आएगी, फलिया भी आएगी, कुछ अवधि का उचित देखभाल भी। तो अब बारी टाइम अपन जो खरपतवार नियंत्रण है, सिंचाई या उर्वरक प्रबंधन छे, कीट छे या रोग छे, बिकी निगरानी के लिए बार अच्छी वृद्धि के लिए अपने एक टाइम देखना पड़ा
3: जी।
4: खेत हम जो जल निकासी व्यवस्था, क्योंकि कड़े कड़े बरसात ज्यादा हो रही थे, बंडे खेत हम पानी भी भर गो, बंड पानी भर गो, तो जिन पानी जमा होगा बंडा आपने जो खेती चाहिए वो खराब हो सके, जो अपनी फसल भी कारण से जो पानी निकालवा की आपने नाली जी द्वारा निकाले, क्योंकि वो पानी ले लो तो जो पौधा की जड़ा छे ना बिना पर्याप्त वायु को मिलेगी जी, कारण बस सड़ भी जाला। एक कारण जो रुके हुए पानी जो खेत में बिना आपने निकालना चाहिए, और विशेष रूप से जो आपने जो सोयाबीन मूंगफली होगी, कपास होगी या दलहनी आपने जो फसल है, वन जल भराव से बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है
3: जी सर। और देखो सर, बात करा आप अगस्त माह की, तो एक अंत में खेती में जल निकास को ध्यान रखता हुआ आपने अगेती सब्जियां की बुवाई और खरीफ फसल में पोषण व कीट प्रबंधन का कार्य भी कर लेना चाहिए। बात करा आप सब्जियों की बुवाई और रोपाई की, तो मेथी और पालक की बात करा, तो हल्की और अच्छा जल निकास वाली भूमि में मेथी व पालक की बुवाई आप कर सका हाँ। बीजा ने फफूंद नाशक से उपचारित कर आपने अवश्य बुवाई करनी चाहिए। ये बात करा आप मूली की, तो जो अगेती मूली है बीके तानी जल भराव से बचाव के तानी उठी हुई बैड यानी की रेस्ट बेड से आप विधि से अपने मूली की बुआई को उपयुक्त काम अपने निपटा लेना है। गोभी और अन्य सब्जियों की बात करें तो फूलगोभी की नर्सरी और टमाटर मिर्च में बैंगन की रोपाई सुरक्षित स्थाना या फिर पॉलीहाउस और कवर में आप शुरू कर सका।
4: और साथ ही साथ अपन अपने जो कीट चने और बाकी रोगा की नियमित निगरानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि इन महीना जो बार बरसात होगा जी कारण कीट भी ज्यादा जाए चे, रोग चे अपने जो फसल चे बिन प्रभावित हो जाए चे, तो किसानों ने कहीं करना चाहिए आपको खेत को निरीक्षण भी करना चाहिए। जब कपास से बिन रस सूचक कीट आ जाए चे, फल व टेंडा में प्रभावित करने वालों कीटा पर भी अपन नजर रखनी चाहिए, और जो अपना सोयाबीन चे बिन पत्ती खा वालों कीट चाहिए टाइम में, तो रोगों की निगरानी करनी चाहिए। और मूंगफली में आपने टीका रोग हो जाए, और अन्य जो पन रोग जब बाकी लक्षण भी दिखाई देगा के कारण आपने जो कृषि विशेषज्ञ जब बाकी सलाह ले और आपने बारी बरसात के मौसम में जो लाग वाला कीट जब आपको नियंत्रण करने वाला उपाय भी करना चाहिए
3: जी सर। तो देखो सर, ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम की बातें हैं कि यदि आपने ध्यान रख ले तो अपनी जो फसल है अब इस समय पर आपने अच्छा उत्पादन दे सके। और जब देखो कार्यक्रम में अच्छा अच्छी बात आप बतावा कि जो भी काम में अच्छे हो गए कि आपने कार्यक्रम में जानकारी भी हो गए तो मनोरंजन भी हो गए, तो जानकारी के पाछे अब आप बात कर ले मनोरंजन की, तो सुन ले बढ़िया सुगीत।
4: बिल्कुल सुनाओ सा।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85%

0: मजबूरी के साथ अब मनप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: हाँ तो सर देखो, मोरिया की आवाज तो आपने सुन लिया और मोरिया की आवाज ने सुनता सुनता ही अपना जो विशेषज्ञ है वे भी अपने सागे हैं। तो कई जानकारी है सर आज की
1: दे रहे थे कि रासायनिक खेती में ट्रैप तकनीकी की भूमिका के लिए डॉक्टर अपने अर्जुन सिंह जी चौधरी।

0: का
1: जी।
0: तो दिलाओ जानकारी
1: जी सर।
2: राम राम प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर अर्जुनलाल चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। आज अब बात करेला रसायन मुक्त खेती में ट्रैप तकनीक की भूमिका। आज के समय में खेती की सबसे बड़ी चुनौती है कीटों का बढ़ता प्रकोप। कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उत्पादन घटता है और किसान को बार बार महंगी व जहरीली दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों, सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय आज बताने जा रहा हूँ। कीट नियंत्रण के ऐसे तरीके भी है जो सस्ते, सुरक्षित और बिना जहर के भी है, जो आज के समय में बहुत ज्यादा उनकी आवश्यकता है। हम बात करेंगे ट्रैप तकनीक के बारे में, विशेष रूप से येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप के बारे में। ये ट्रैप तकनीक है, ये तीनों तकनीक जैविक खेती और रसायन मुक्त खेती की रीढ़ है। तो सबसे पहले बात करेंगे येलो ट्रैप यानी पीला चिपचिपा जाल क्या होता है, कैसे काम करता है। किसान भाइयों, येलो ट्रैप एक पीले रंग की चिपचिपी सीट होती है। कई छोटे छोटे रस चूसने वाले कीड़े पीले रंग की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। सबसे ज्यादा सफेद मक्खी, माहू, एफिड जिसको अपन एफिड बोलते हैं, लीफ ऑफर, ये तीनों इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट, सकिंग पेस्ट है, जो किसान भाइयों इनको कंट्रोल करने के लिए येलो ट्रैप हम काम में ले रहे हैं। तो इसको कैसे काम में लेना है, क्या क्या करना है, और ये कीट क्या है कि जो भी पीला रंग का आप देखते हो, वस्त्र भी है पीला रंग का, तो वो वस्त्र की तरफ भी आकर्षित होते हैं। इसलिए येलो ट्रैप अपन काम में लेंगे। सब्जियों, जो सारी सब्जियों में ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं आपके, सफेद मक्खी, एफिड, एफिड हर सब्जी में लगता है, लीफ ऑफर, फिर दालें आ गई, तिलहन में भी, फूलों की खेती में भी, सब में ये हानि पहुंचाते हैं। और इनको बिना दवाइयों के, कोई भी प्रकार का अपन को जहर खेत में नहीं डालना है, उसके लिए अपन को कैसे कैसे ट्रैप मार्केट में भी उपलब्ध है। लेकिन मार्केट से अच्छा है कि किसान भाई घर पे भी अच्छा एक येलो ट्रैप बना सकते हैं, मतलब आसानी से, कोई उसमें ज्यादा वो नहीं है, खर्चा नहीं है, बिल्कुल आसान विधि है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए क्या करना, मान लो घर पे भी आपको अगर कोई चीज जैसे मटका है, यूज नहीं आ रहा है, तो मटका का क्या करना है, मटके पे जो ये येलो कलर है, पीला कलर कर दो उसके ऊपर। अब कलर करने के बाद में उसमें क्या करोगे, जो ग्रीस होता है ना, ग्रीस चारों तरफ उस पर लेप कर देते हैं, ग्रीस का लेप कर देते हैं। फिर लेप करने के बाद में उसको, जो भी आपकी फसल है या सब्जी है या कपास है या तिल डाले, तिलन फूलों की खेती है, उससे आपकी जो फसल है उससे 1 से 2 फीट ऊंचाई पर उसको लगा दो। लगाने के बाद में आप ऑटोमेटिक निगरानी करोगे, आप फिर आप देखोगे भाई मॉर्निंग में लगाया, फिर शाम तक देख के आओगे, तो आपको एहसास होगा भाई इतने सारे ये कीट खांसे मतलब इसमें आके चिपक जाते हैं और उनका आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो लगाने की विधि क्या है भाई, 10 से 12 ट्रैप प्रति एकड़, एक एकड़ में आपको कितना लगाना है, 10 से 12 ट्रैप लगाने हैं। फसल की ऊंचाई से भाई, जो आपकी फसल है 2 फीट की है तो 2 फीट से भी ऊपर, 1 या 2 फीट ऊपर, मतलब फसल की जो ऊंचाई है उससे थोड़ा ऊपर लगाना है उसको, मतलब 1 से 2 फीट ऊपर। और 15 से 20 दिन में ट्रैप बदले, तो ये 15 से 20 दिन में ट्रैप आपको बदलना, मतलब चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो आपने मान लो ग्रीस का लेप करके आपने मटका लगा दिया, तो उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाएंगे, वो जितने कीड़े हैं वो सारे बहुत सारे चिपक जाएंगे, फिर उसको क्या चिपकने की थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। तो उसको वापस आप एक बार उसको उतार के नया ग्रीस लगा दो, मतलब उसको नया लेप कर दो पूरा, फिर वापस ये चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लाभ क्या है, अब लाभ की बात करें किसान भाइयों, देखो लाभ सबसे सस्ता और सरल उपाय है, मतलब इसमें कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं छिड़कनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप कोई भी मटका या पीपा जो घर पे मतलब यूजफुल नहीं आ रहा है उसमें आराम से बस पीला कलर करके आप खेत में आसानी से उसको सेटअप कर सकते हो, उसमें ज्यादा नहीं है, छोटा लकड़ी का कोई भी लकड़ी का डंडा लिया है ना, और उसको खेत में गाड़ के और खेत के ऊपर वहां लगा दो छोटे छोटे, तो आप कोई भी प्रकार का जहर यूज नहीं कर रहे हो। इसमें जो आपके मित्र कीट है ना, अब आप क्या करते हो भाई, अपने दवाई का स्प्रे करते हैं मान लो किसान भाई हो, तो दवाई उसमें ये थोड़ी पता चलता है भाई ये मित्र कीट है, ये अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ये सारी चीजें सुरक्षित है, मतलब मित्र कीट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कीट की शुरुआती जानकारी मिल जाती है, जो कीट आपको शुरुआती जानकारी मतलब है कि कीट आना स्टार्ट हो गया, तो वो जैसे ही आपको येलो ट्रैप की तरफ आकर्षित होकर वो उस पर चिपक जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा भाई एफिड आ रहा है या सफेद मक्खी आ रही है या फिर लीफ ऊपर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे पेस्ट है, तो आपको आसानी से आप पता लगा सकते हो भाई आने लग गए कीट और अपना इलाज भी होने लग गया है। फिर है ब्लू ट्रैप, मतलब येलो ट्रैप तो ये 3 इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद में नीला चिपचिपा जाल, तो नीला ब्लू

ट्रैप जिसको ब्लू बोलते हैं, ब्लू ट्रैप मुख्य रूप से थ्रिप्स के लिए, जो थ्रिप्स है वो भी एक हानिकारक इंसेक्ट है जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, के लिए उपयोगी है। थ्रिप्स छोटा कीट है, बहुत छोटा कीट। तो ब्लू ट्रैप से कौन सा कीट नियंत्रण होता है? ओनली थ्रिप्स होता है, उपयोगी फसल है थ्रिप्स। देखो प्याज में अधिक नुकसान पहुंचाता है, मिर्ची में, फूलों की खेती में, और जो ग्रीन हाउस फसलें इसको भी लगाने की क्या विधि है? वो 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़, एक एकड़ में आप 10 से 15 ट्रैप लगा दो ब्लू कलर के, खेत में समान दूरी पर लगाए। अब इसके लाभ क्या है? लाभ थ्रिप्स नियंत्रण में सबसे प्रभावी उपयोग, मतलब दवा छिड़काव की आवश्यकता कम है, जैविक खेती के लिए सबसे उपयुक्त। जो जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती के लिए थ्रिप्स का जो आप कंट्रोल कर रहे हो वो सबसे अच्छा उपाय है। के बाद में एक आपका अब फेरोमोन ट्रैप यानी गंध पास। अब फेरोमोन क्या होता है, फेरोमोन को कैसे यूज करते हैं, ये भी आपका बहुत अच्छा मतलब प्रभावी है।

0: होता है, फिरोमोन को कैसे यूज करते हैं, ये भी आपका बहुत अच्छा मतलब प्रभावी है। अब फिरोमोन ट्रैप क्या है? फिरोमोन ट्रैप एक ऐसा उपकरण है जिसमें मादा कीट की गंध यानी फिरोमोन को कृत्रिम रूप से बनाकर ल्यूर के रूप में लगाया जाता है। जो फिरोमोन ट्रैप क्या होता है कि जो मादा कीट होता है उसकी गंध होती है फिरोमोन, उसको कृत्रिम रूप से बनाकर ल्यूर के रूप में बनाते हैं, जिससे क्या होता है नर कीट होता है उस गंध से आकर्षित होकर ट्रैप में फंस जाता है और मर जाता है। मतलब जो नर कीट है उसको क्या करेगा, वो आकर्षण करेगा, मतलब उसको अपने पास बुलाने का काम करेगा। तो मादा कीट प्रजनन के समय फिरोमोन गंध छोड़ती है, उसी गंध को कृत्रिम रूप से वैज्ञानिक तैयार करते हैं और उसको एक ल्यूर बनाते हैं। तो वो खेतों में लगाने से क्या होता है कि जो नर कीट है नर कीट उस गंध की ओर आकर्षित होती है और ट्रैप में पसने से प्रजनन रुक जाता है। अब वो आकर्षित होगा और जो ट्रैप है उसमें वो पस जाते हैं। एक नर कीट 4 से 5 मादा से प्रजनन करता है। एक मादा लगभग 200 से 300 अंडे देती है। यानी एक नर कीट पकड़ने से क्या मतलब है आपको किसान भाई, एक नर कीट अगर आप फिरोमोन से पकड़ रहे हो इसका मतलब है हजारों कीट पैदा होने से रुक जाते हैं। फिरोमोन ट्रैप की संरचना मतलब कैसा होता है वो देखो, उसमें ल्यूर होता है विशिष्ट कीट के लिए विशेष गंध, और फर्नल या कंटेनर होता है कीट को पसाने के लिए यंत्र होता है, और ढक्कन होता है, मतलब ढक्कन है बारिश और धूप से सुरक्षित। अगर मान लो बारिश आ गई तो वो ऊपर का ढक्कन होता है उससे क्या होता है पानी अंदर नहीं जाता है। बैंगन का फल व तना छेदक, कपास की गुलाबी सुंडी, टमाटर का लीफ माइनर फल मक्खी, गन्ना के कीट, गोभी का डायमंड बैक मॉथ, जो भी अपने ककड़ी खरबूज तरबूज ये फसलें लगाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रकोप होता है फल मक्खी का होता है। तो फल मक्खी के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छा उपाय है वो फिरोमोन ट्रैप बहुत अच्छा इसका उपाय है। फिरोमोन ट्रैप अब इसको लगाना कैसा है, वही 10 से 12 ट्रैप आपको प्रति एकड़, आपकी जो एक एकड़ में 10 से 12 आपको ट्रैप लगाने हैं। फसल की ऊंचाई से 1 से 2 फीट ऊंचाई पर लगाना है और ल्यूर को 30 से 45 दिन में बदलने, मतलब वो पुराने ल्यूर जमीन में गाड़ दे। अब पुराना ल्यूर है उसको मतलब ऐसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप इसे बाहर उसको छोड़ दोगे तो जो थोड़ी बहुत भी उसमें गंध बची होगी फिर वो सारे इंसेक्ट उधर आके उसके आकर्षण मतलब उसके आसपास मंडराते रहेंगे। अब इसकी जगह लागत क्या है लगाने की, आप सोचते हो वो बहुत महंगा सौदा है, ये है कुछ भी महंगा नहीं है। लागत ट्रैप में 25 से 70 रुपए के लगभग, मतलब 25 रुपए से स्टार्ट होते हैं, 70 रुपए तक अच्छे अच्छे ट्रैप मिल जाते हैं। और जो उसके लूर जो चेंज करने का लूर आता है वो 30 से 50 रुपए का मात्र इतना ही आता है। एक लूर 30 रुपए से लेकर 40 रुपए 35-50 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। अब फिरोमोन ट्रैप के लाभ, अब इससे भाई आपको क्या लाभ मिल रहे हैं, थ्रिप्स नियंत्रण में सबसे प्रभावी, जो थ्रिप्स होता है उसके नियंत्रण में सबसे अच्छा प्रभावी है। दवा छिड़काव की आवश्यकता कम है और जैविक खेती के लिए उपयुक्त है, साइन मुक्त है, कोई प्रकार का आपको केमिकल मतलब किसी प्रकार की दवाई पेस्टिसाइड कुछ भी छिड़कना नहीं है। पर्यावरण के लिए अनुकूल, पर्यावरण बिल्कुल सेफ रहेगा, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। मित्र कीट सुरक्षित है, इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो मित्र कीट सबसे ज्यादा सुरक्षित है, किसान व मजदूर के लिए भी बहुत ज्यादा सुरक्षित है। लंबे समय में लागत कम, अगर आप लंबे समय के लिए यूज कर रहे हो तो इसकी लागत बहुत कम आएगी। अब आवश्यक सावधानी क्या क्या बरतनी है आपको, अगर आप फिरोमोन ट्रैप लगा रहे हो तो उसके लिए आवश्यक सावधानियां क्या है, ल्यूर समय पे बदले। देखो पहला बात है कि जो ल्यूर अगर पुराना हो गया मतलब फिर उसकी गंध थोड़ा कम हो जाती है तो फिर वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। पुराने ल्यूर को सही तरीके से नष्ट करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो अगर फिर आप अब चेंज कर रहे हो उसका ल्यूर मतलब दूसरा बदलना चाह रहे हो तो जो पुराना ल्यूर है आपको उसको या तो जमीन में गाड़ो, उसको सही से चेंज करना है। उपयोग से पहले सही कीट की पहचान करे, ट्रैप की नियमित जांच करे, उसकी टाइम टाइम से जांच भी करनी चाहिए भाई, उसमें इंसेक्ट भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने ऐसे खेत में लगा दिए और उसमें किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट आकर्षित नहीं हो रहा है तो उसकी जांच करनी चाहिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आज आपने जाना कि येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप, फिरोमोन ट्रैप कैसे आपकी फसल को कीटों से सुरक्षित रखते हैं। कम दवा, कम खर्च, अधिक उत्पादन, यही है आज की स्मार्ट और टिकाऊ खेती। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

0: रसायन युक्त खेती में ट्रैक तकनीक की भूमिका। तो देखो नरपत भाई, ये विषय में आते जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह चौधरी जी, और कितनी बढ़िया रूपयों की जानकारी दिया कि किन तरीके से छोटा छोटा साधन है अपना आप अपनी फसलों ने कीट और रोगों से दूर रख सका जा। तो देखो सर, अपना किसान साथी मेहनत करे छे, लागत लगाओ छे और मुस्तैद अपना खेता में खड़ा रहे छे, पर थोड़ी सी लापरवाही होगी और कीट और रोग यदि अपनी फसलों ने जकड़ लिया तो की तरीके से अपना जो किसान साथी है, बाकी फसलां तो नष्ट हो गई छे, फसलां के नष्ट होबा के साथ साथ गिरे छे वहां को मनोबल और आर्थिक स्थिति भी वहां की थोड़ी सी कमजोर हो जाओ छे। तो इनलिए ये जो छोटी छोटी चीजें छे यानी आपने विशेष ध्यान रखकर काम में लेना चाहिए। और खेती बाड़ी में बहुत सारा नया नवाचार आजकल चल रहे छे, तो सबकी जानकारी आपने होनी चाहिए। नई नई तकनीक आ रही है, चाहे देखो अब अपने खेतों में खाद दवाई के छिड़काव की ले लो, बीज बुवाई की ले लो, सिंचाई की ले लो या फिर फसल कटाई की ले लो, बहुत अच्छी तकनीक आ जाए जहां से अपने समय भी बचे छे, लागत भी कम आवे छे और आपने जो हो चाहे ना कि भाई खेत में आपने बहुत सारा मिनखाने लगा रहा अपनों काम पूरा करना पड़े, तो यह तकनीक ने यदि आपने काम में लेवा तो अपनी जो खेती बाड़ी है वो आपने अच्छो मुनाफा देवेली।
1: बिल्कुल, समय की बचत हो ली, आपने पैसा भी बचत हो, उत्पादन भी ज्यादा हो।
0: और देखो सर, यहाँ सब फायदा के साथ ही अपने नया नवाचार ने अपनी खेती बाड़ी में अपनाना चाहे तो अपना किसान सहायता ही अच्छा से अच्छो फायदा उठा सकेला। और देखो जब कार्यक्रम में फायदा उठावा की बात करा तो जानकारी और मनोरंजन दोनों को भरपूर समावेश अपना कार्यक्रम में हुए छे। तो देखो जानकारी की बात तो आप कर ली और जानकारी के साथ साथ आप धन्यवाद देवा अपना विशेषज्ञ ने भी, और धन्यवाद के साथ सुनवा देवा एक बढ़िया सो गीत।
1: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: हाँ तो नरपत भाई देखो ये मीठा मीठा गीत के साथ ही कार्यक्रम खेती बाड़ी को भी टेम पूर हो तो चालू है। तो कार्यक्रम में देवा आते ही विराम आ गया जो अभिलाषा
1: और नरपत सिंह ने
0: चाला और करा
1: राम राम सा।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। साथियों, रात के 8 बजने को है और वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मानापुरम आईडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मानापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मानापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अभी आपने सुना अलादीन फिल्म का गाना, आवाजें थी विशाल डडलानी और शेखर रवजियानी की, बोल थे विशाल डडलानी के और संगीत है विशाल शेखर का।

0: अभी आप सुन रहे थे जिसमें फिल्म का गाना आवाजें थी श्रेया घोषाल और शान की, बोल थे नीलेश मिश्रा के और संगीत था एमएम करीम का। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे विधानसभा समीक्षा।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज हंगामे के बीच गुजरा। इस दौरान न तो प्रश्नकाल हुआ और न ही शून्यकाल सुचारू चल सका। हालांकि शून्यकाल के दौरान कुछ सदस्यों को विपक्ष की हंगामे

के बीच स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी विषय वस्तु रखने का मौका मिला। वहीं कुछ विधायकों ने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए अपनी बात सदन के सामने रखी। प्रश्नकाल और शून्यकाल में हुए हंगामे के कारण सदन दो बार स्थगित हुआ। भोजनावकाश के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अनुपूरक मांगों के साथ ही विधायी कार्य करवाने का प्रयास किया। हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश हुआ। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद कुछ देर के लिए सदन और चला। आखिरकार दोपहर 1:45 पर विधानसभा को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल सुबह 11 बजे मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रश्नकाल की शुरुआत करने लगे तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हुए और उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। श्री देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद मौका दिया जाएगा, लेकिन श्री जूली अपनी बात पर अड़े रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें आज उसी गेट से आने दिया गया जिस गेट से कल नहीं आने दिया था। टीकाराम जूली ने अध्यक्ष देवनानी को कहा कि पिछली बार जब वे विधायक थे और गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो विरोध करते हुए वे लोग भी उसी गेट से प्रवेश करते थे। श्री जूली ने कहा कि वे प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा और भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब वह बाहर थे तो सदन में उनके खिलाफ अनर्गल बातें बोली गई जो सरासर गलत है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगी। तभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सदन में ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को कहा कि वे सदन में आकर अपनी बात नियमों के तहत कहे। इसी दौरान स्पीकर श्री देवनानी ने एक बार फिर सभी को अपनी अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। जब कांग्रेस विधायक अपनी सीटों पर नहीं गए तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। करीब 5 तक जोरदार हंगामा हुआ। ऐसे में सुबह 11:05 पर सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मंत्री श्री दिलावर के इस्तीफे की मांग की। तभी श्री देवनानी ने सभी से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा बोली कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। उसी दौरान सभी कांग्रेस विधायक फिर से वेल में आ गए और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि स्पीकर श्री देवनानी ने शून्यकाल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, अशोक भंडारी और मनोज कुमार ने अपनी अपनी बात रखी। हालांकि हंगामा काफी ज्यादा था तो सदस्य अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाए और हंगामे तथा शोर के बीच जनता से जुड़े उनके मुद्दे गौण हो गए। इस दौरान स्पीकर श्री देवनानी ने सभी को अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस विधायक वेल में ही डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12:15 सदन को करीब 45 के लिए दोपहर 1 तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 1 जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष के वेल में नारेबाजी जारी रही। इस दौरान हंगामे के बीच ही सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। इसके बाद आगामी कामकाज की शुरुआत हुई। इस दौरान विधायक अतुल भंसाली ने विशेष अधिकार और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 2026-2027 के सभापति की ओर से प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। ये प्रतिवेदन विधायक डॉ सुभाष गर्ग के खिलाफ पेश विशेष अधिकार हनन से जुड़ी प्रस्ताव के संबंध में था, जिसमें प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए नियत तिथि को आगामी सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की गई। इस पर सदन ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि इस दौरान भी विपक्ष का विरोध वेल में जारी रहा। इसके बाद सदन की मेज पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी

0: प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर ने अलग अलग विभागों की अधिसूचनाएं मेज पर रखी। इसी बीच जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से नाम पुकारा गया तो विपक्ष ने और भी तेज नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, साथ ही कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए। श्री दिलावर के बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने अपने विभाग की अधिसूचनाएं टेबल की। इस दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी खत्म नहीं हुई तो विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता सब देख रही है, जनता ने जिस काम के लिए भेजा है वह काम आप नहीं कर रहे हैं। साथ ही कहा कि उन्हें सभी के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने सभी से अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। श्री देवनानी ने यह भी कहा कि सभी लोग सीट पर जाएंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। हालांकि विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी और वेल में ही डटे रहे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने अपने अपने विभाग से जुड़े वार्षिक प्रतिवेदन रखे। इसके बाद समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया गया। इस दौरान हंगामे के बीच विधायी कार्य शुरू हुआ। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की ओर से रखा गया। अब इस बिल को बाद में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। जब यूसीसी बिल पेश हुआ तो भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उन्हें सदन में जनता के मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं मिल रही है। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों से कहा कि पहले वित्त से संबंधित अनुदान की मांगों को पारित होने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार अपना बिजनेस पूरा करना चाहती है, लेकिन जनता के मुद्दों का क्या होगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही से बॉयकॉट करके जाने की घोषणा की। हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक 1:21 पर सदन की कार्यवाही से बॉयकॉट करके चले गए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विनियोग संशोधन विधेयक का पुनरुत्थापन किया। कांग्रेस के बॉयकॉट को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में कहा कि कांग्रेस में आपसी खींचतान है। मीडिया के सामने उन्होंने गलत बयानबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से भागने का काम किया है। सदन में वे किसी भी विशेष मुद्दे पर नहीं बोले। राजस्थान की जनता सब देख रही है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से कहा कि वह भी इस घटनाक्रम से जुड़े तथ्य सदन के सामने रखे ताकि जनता को पता चले कि कल क्या हुआ था। इस पर श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा का गेट आज भी खुला है और कल भी खुला था। विधायकों के लिए गेट नंबर 6 सिर्फ पैदल एक एक करके आने वालों के लिए खुला रहता है। समूह ने विधानसभा के गेट से आने की अनुमति ना पहले थी और ना ही आगे होगी। उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए गेट गुरुवार को भी खुला था, लेकिन गुरुवार को एमएलए समूह में आए तो उन्हें रोका गया। इसका कारण ये है कि पिछली बार जब सत्र के दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो विधायकों के बीच ही 2 बाहरी लोग भी घुस गए। हालांकि उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने पहचान कर बाहर निकाल दिया। ऐसे में समूह में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। श्री देवनानी ने कहा कि मार्शल ने उन्हें जानकारी दी कि विधानसभा के गेट पर गुरुवार को 2-3 लोग चढ़ गए। ये नियमों के हिसाब से अवांछनीय है। उन्होंने अपील की कि भविष्य में इस तरह की बातें न हो। इसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हुआ और दोपहर 1:45 पर सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी

603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। अब आप कुछ ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, उसके बाद समाचार संध्या, उसके बाद न्यूज एट नाइन, फिर उर्दू में समाचार और उसके बाद करंट अफेयर्स। इन कार्यक्रमों को हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल की प्रतीक्षा करें।

अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास करा दूं, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर कर दूं, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है

नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और अगले 15 मिनट तक आप रहेंगे मेरे साथ और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में और भारतीय खिलाड़ियों ने आज कहां कहां पर अपना सिक्का जमाया है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक पक्का किया। वहीं भारतीय महिला पहलवान काजल भूषक अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनी। विश्व

0: हॉकी में आज रात भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड में लॉजेन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर इस समय विश्व वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खेला जा रहा है। सेमीफाइनल में जगह बनानी है और भारतीय जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद ने और भारत के लिए कम से कम एक कांस्य पदक उन्होंने पक्का कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने विश्व की चौथे नंबर की जोड़ी जिया यी फैन और झांग शूशियान के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और ये मुकाबला 16-21, 21-15 और 21-13 से जीत लिया।
1: And that is the best win of their career by a mile. A fantastic performance from the two Indians and hugely appreciated by a gloriously partisan crowd.
2: Teresa Jolly in tears. Yeah. She hugs Kulela Gopichand and father and daughter embrace.
1: Well, they've guaranteed themselves a medal. They've knocked out one of the top pairs in the event. And they have given the home crowd something to really enjoy.
0: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आइए अब सीधा जुड़ते हैं अपने संवाददाता भानु प्रताप सिंह से और जानते हैं उनसे और क्या कुछ रहा आज। भानु को हम इससे पहले कि हम लाइन पे लें हम आपको और भी बता दें कि 70 मिनट तक चले मुकाबले के बाद त्रिशा और गायत्री ने जिया और झांग को पहली बार हराने पर कहा कि उनका यह सफर अभी रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा आज एक और बैडमिंटन के कोर्ट से एक अच्छी खबर हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो अच्छी खबर नहीं है। जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वे किंग और वांग चोंग की जोड़ी से सीधे गेम में हार गई। अपने संवाददाता के पास चलते हैं भानु के पास और जानते हैं कि आज क्या कुछ रहा स्टेडियम के अंदर। भानु, भारतीय जोड़ी ने इस जीत के साथ पदक तो पक्का कर लिया है, लेकिन अब फाइनल में उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। आज के मैच को देखते हुए क्या संभावनाएं लगती हैं?
3: बीच-बीच आज के मैच को देख के संभावनाएं बहुत ज्यादा लगती हैं। जैसा आज तीसरा और गायत्री गोपी चंद ने खेला, उनका गेम पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण रहा। उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज से अपना गेम खेला और बहुत ही आत्मसंयम अपना बरकरार रखा गेम के दौरान, तो कल के मैच के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कल वे पहली वरीयता प्राप्त ली शेंगशू और टांग निन से सामना करेंगी। तो जैसा कि आज उन्होंने चाइनीज पेयर को हराया है, तो कल भी वह एक चाइनीज पेयर के खिलाफ खेलने वाली है, तो आज उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत बरकरार रहेगा कल के मैच के लिए।
0: भानु, पहले गेम में देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे कि भारतीय जोड़ी में थोड़ा विश्वास कम है, आपसी समझदारी भी थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि शुरू में वो लगभग 4-0 से पीछे थी पहले गेम में। हालांकि पहला गेम उन्होंने हार गई, दूसरे गेम में भी वो पीछे थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। आखिर के दोनों गेम से भारतीय जोड़ी के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है?
3: जी, उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज जैसा कि मैंने बताया दिखाया। उन्होंने एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच ली अपने गेम की तरफ। उन्होंने हार नहीं मानी एंड तक। गौर की बात है कि झांग शूशियान और जियाई फान की जो जोड़ी थी उसमें जियाई फान दो बार ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं। 2020 के ओलंपिक्स में उन्होंने रजत पदक जीता था, वहीं उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो उनके खिलाफ खेलना कोई बहुत ही आसान बात नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपना आत्मसंयम बरकरार रखा और बहुत ही अच्छे से उस गेम को खेला। जब वो पहला गेम हार गई थी तब थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर दिखाई थी, लेकिन उन्होंने दूसरे गेम से अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा रखा। जहां त्रिशा जौली ने अटैक मोड अपनाया था, गायत्री गोपीचंद ने नेट संभाला और ओवरऑल उनका नियंत्रण बहुत अच्छा रहा पूरे गेम के दौरान।
0: भानु, स्टेडियम में भारत की इस जीत पर दर्शकों का उत्साह कैसा था?
3: दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। बहुत ही अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया अपने प्लेयर्स को। दिन पर दिन जैसा कि हम देखते जा रहे थे कि प्लेयर्स की जैसे तादाद जो भारतीय प्लेयर्स की तादाद कम हो रही थी अलग अलग डिसिप्लिन में, लेकिन जितने प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे उसके हिसाब से बहुत ही क्राउड जो था सपोर्ट में आया था। आज दोनों मैचेस के लिए क्राउड का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा, और जैसा कि मैंने बताया गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली के मैच में भी उनका सपोर्ट बरकरार रहा।
0: लेकिन इस बीच भानु, एक अच्छी खबर नहीं आई जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार गई। इस पे क्या राय है? हालांकि वो दोनों ही गेम में बहुत

0: दबाव पे नजर आए और 21-18 और 21-9 से हार गई।
1: जी, उनका पहले जो लियांग वी कैंग और वांग चैंग के खिलाफ उनका पहले से ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। इस मैच से पहले उनका 9-4 का रिकॉर्ड था। चार मैच भी उन्होंने उनके खिलाफ जीते थे। और आज भी जैसा कि हमने देखा कि जो चाइनीज जोड़ी थी उन्होंने अपना फ्लैट गेम बहुत ही अच्छा रखा। सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्लैट गेम के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, तो वही गेम उन्होंने उनके खिलाफ खेला और उसी से उन्होंने जीत हासिल करी। और इसके सामने वो सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी परेशानी नजर आई। नवीन,
0: धन्यवाद भानु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए
1: धन्यवाद।
0: आइए वापस चलते हैं अब त्रिशा और गायत्री के गेम की तरफ। जिया और झांग को पहली बार हराने पर कहा कि उनका सफर अभी रुकने वाला नहीं है।
2: From the starting only he was telling that being the present moment and very calm because that helped us to scoring the points and that really worked today that we were not greedy to just get the points. We were just be patient and waiting for the right time to just scoring the points. I think that really worked.
0: वैसे किसी भी खिलाड़ी को तैयार करने और मैच जितवाने के लिए कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही रोल हमें आज इस मैच में देखने को मिला जब पुलेला गोपीचंद ने इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय जोड़ी को धैर्य रखने का मैसेज दिया और अंत में इस जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया। मैच के बाद त्रिशा ने बताया कि उनके कोच जो थे हर पॉइंट पर उन्हें धैर्य रखने को कह रहे थे।
2: Today was also a pretty good match. I think it was a pretty tough match. We were down, trailing, and then even in the second set, it was very tricky. But then I think we told each other to stay calm. And I think that's what we're going to do tomorrow as well. We just want to get on court and give 100%. Just enjoy.
0: ये थी बैडमिंटन से खबरें जो बहुत अच्छी खबर आ रखी है और कल सबकी नजर रहेगी महिला डबल्स पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। एफआईआरच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अंतिम मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं बात करते हैं अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड के साथ कल होने वाले विश्व कप के दूसरे दौर के मुकाबले को करो या मरो का बताया है। कल बड़ा जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा भारतीय पुरुष टीम और नीदरलैंड के बीच में। इस बीच हरमनप्रीत ने कहा कि उनकी टीम को पूरे 60 मिनट अच्छी हॉकी खेलनी होगी।
3: जो हमने मिस्टेक्स की हैं और उस पर हमने काफी बात की है मीटिंग्स में एंड स्पेशली विदाउट बॉल जो हमारा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पोजीशन वाइज उसको हमने कैसे मेंटेन करना है और कैसे अच्छे कम्युनिकेशन के साथ उन गलतियों को कवर कर सकते हैं हम, तो वो हमने एनालाइज किया है वीडियोज में। एक वही एरिया है कि जहां पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि आने वाले मैचेस में वो सिली मिस्टेक्स आपको पनिश कर सकती हैं। हमारा वही है फोकस के डिफेंस में अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारे पता है कि हमारी टीम चांसेस क्रिएट कर सकती हैं ओपोनेंट्स के सर्कल में जाके और एटलीस्ट पीसी और गोल इन शॉट और गोल कर सकते हैं।
0: इस बीच हम आपको बता दें पूल डी के पहले दौर में वेल्स और पाकिस्तान को पराजित करने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से हार गई थी जिससे दूसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत के पास एक भी अंक शेष नहीं बचा है। इंग्लैंड इस जीत के साथ 3 अंक लेकर पूल डी के दूसरे दौर में पहुंच गई जो कि पूल ए में नीदरलैंड के पास भी 3 अंक है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नीदरलैंड और अर्जेंटीना को हराना होगा। और अब बात कुश्ती की। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में एक बार फिर विश्व चैंपियन बन गई हैं। काजल लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। स्लोवाकिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में काजल ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और ब्यौरे के साथ मुकेश।
4: काजल की इस ऐतिहासिक जीत ने महिला कुश्ती में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने 76 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में हिस्सा लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चीन की झिंगरू सुन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में काजल की लगातार दबाव बनाने के कारण सुन शुरू से ही बैकफुट पर रही। काजल ने इससे पहले 2024 में 69 किलोग्राम के वर्ग में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप और 2025 में 72 किलोग्राम में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। काजल ने 2025 में 72 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस वर्ष अपना वेट क्लास बदला और 76 किलोग्राम वर्ग में मुकाबला किया। ये भारतीय रेसलर लगातार दूसरी बार अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। वो अपने

0: देश की दूसरी ऐसी रेसलर हैं जिन्होंने इस लेवल पर दो बार स्वर्ण पदक जीता है। पूरे टूर्नामेंट में काजल ने बिना कोई पॉइंट गंवाए खिताब अपने नाम किया। 2026 में ये उनका लगातार पांचवां स्वर्ण पदक है। आज का दिन सिर्फ काजल के नाम ही नहीं था बल्कि भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी रजत पदक अपने नाम किए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अगली खबर है अब जेवलिन से। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के स्टेट ओलंपिक डे ला पोंटिस में लॉजिन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से शुरू होगा। और ब्यौरे के साथ निखिल। लॉजिन डायमंड लीग बेहद रोमांचक होगी। इस इवेंट में कई ओलंपिक, वर्ल्ड और यूरोपियन चैंपियन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों की जैवलिन स्पर्धा में दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े स्टार भारत के नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के भुवनेश थरंगा पाथिरगे एक बार फिर आमने सामने होंगे। नीरज चोपड़ा लॉजिन डायमंड लीग 2026 में टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लॉजिन में वे चौथी बार उतरेंगे। ये लीग चोपड़ा का 2026 एथलेटिक सीजन का तीसरा प्रतियोगी इवेंट है। श्रीलंका के पाथिरगे ने जून में रोम में 92.62 मीटर के साथ ब्रसेल्स में होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं पूर्व ओलंपिक और डायमंड लीग चैंपियन नीरज चोपड़ा स्टैंडिंग में पीछे हैं। उन्हें लॉजिन में आज एक बड़े करिश्माई थ्रो की जरूरत है। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जैसे ही एक मजबूत फील्ड में यूरोपियन स्टार्स के साथ मुकाबला करेंगे। पिछले चार ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले 5 जेवलिन सुपरस्टार्स 21 अगस्त को एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा और पथिरगे के अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो के वालकॉट और ग्रेनाडा के पीटर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: इस बीच भारत 22 और 23 अगस्त को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें हिस्सा लेंगी। इस बैठक में सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख एक साथ आएंगे ताकि युवा मामलों और खेलों में सहयोग को मजबूत किया जा सके। ये बैठक युवाओं के विकास और सशक्तिकरण में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी और इसमें शिक्षा, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्याण और सतत विकास पर चर्चा होगी। ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और ब्रिक्स युवा सम्मेलन से सामने आई खास सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के सहयोग से भविष्य के क्षेत्रों में पहचान की जाएगी। और खेल मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और उनके बयान शामिल होंगे और इसके बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और अब घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही है, इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और एक पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय महिला पहलवान काजल धूचक अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बन गई है। विश्व कप हॉकी में आज रात भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के लॉजिन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मेरे सहयोगी निशा साहू और ज्योत्सना के साथ मुझे आज का स्पोर्ट्स स्कैन समाप्त करने की दें इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी

0: कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे, इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
5: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया

0: कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
2: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से एक चीज डेवलप हो रही है। पहले ही केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
3: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
4: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: newsonair.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगलू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपये पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में अनपढ़ फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में प्रोफेसर फिल्म का गाना। हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम ससुराल।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए एसडी बर्मन की आवाज में सुजाता फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मुगले आजम फिल्म से। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

0: सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म से गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो इसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थी। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग-अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थी और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का

0: और अनोखी रात का ये गाना तो आपने कई बार सुना होगा।
1: मेरी बेरी के बेर मत छोड़ो, कोई काटा, हाय काटा।

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

0: 1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने मां की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।
1: कोई बुड्ढा लंबो लंबो, कोई जादू।

300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकू कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे छाया गीत।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बज चुके हैं। पेश खिदमत है फिल्म संगीत। आगाज करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए फिल्म आंखें के इस नगमे के साथ। कलाम साहिल लुधियानवी का है और मौसिकी रवि की।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना फिल्म आंखें में। आइए अब सुनते हैं हेमंत कुमार मुखर्जी को फिल्म बात एक रात की में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी और मौसिकार हेमंत कुमार मुखर्जी।

अब सुनते हैं योगेश का लिखा गीत। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मिली जुली आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम है बातों बातों में।

0: बहारें फिर भी आएंगी। जी हां श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म में महेंद्र कपूर को सुना। बोल कैफी आजमी के थे और तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश, आइए सुनते हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की मिली जुली आवाजों में, जिसे हमने चुना है फिल्म सीआईडी से। कलाम मजरू सुल्तानपुरी का है और मौसिकी ओपी नैयर की।

मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आइए सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी का ये नगमा। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म छलिया से। नगमा निगार है कमर जलालाबादी और मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

नील कमल। जी हाँ श्रोताओं, अगला गीत हमने इसी फिल्म से लिया है जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने। बोल साहिल लुधियानवी के हैं और धुन बनाई है रवि ने।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

अभी आपने गीता दत्त, माफ कीजिए, अभी आपने लता मंगेशकर और हेमंत कुमार मुखर्जी को सुना फिल्म पतीता में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और सुरों में ढाला था हेमंत कुमार मुखर्जी ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगली पेशकश गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म प्यासा से। कलाम साहिल लुधियानवी का है और मौसिकी सचिन देव बर्मन की।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी को फिल्म राम और श्याम में। कलाम शकील बदायूनी का है और मौसिकी नौशाद की।

अभी आपने मोहम्मद रफी को सुना फिल्म राम और श्याम में। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में फिल्म काला पत्थर से। नगमा निगार हैं साहिल लुधियानवी और मौसिकार राजेश रोशन।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गाए फिल्म काला पत्थर के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही खत्म होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ಅವತಾರಿಣಿ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है. नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें. श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की. उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है. बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे. गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया. इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी. श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया. कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है. मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है. उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता.
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है. सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है. सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए

0: पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जौली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर, जय हिंद।